as we bring to you the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Mera naam hai Sakshi Mandwal, dosto. Aur aaj ke din ki shuruaat mein bahut sare events humne dekhe hain aur dekhne ko bhi hame mile. Sabse pehle agar baat karte hain to kabaddi mein bhartiya team ka jo pradarshan abhi tak raha hai wo bahut hi dominating raha aaj in the men's group A, jahan par humne South Korea ko 63-31 se हरा कर एक बहुत कन्विंसिंग जीत के साथ आज के दिन की शुरुआत करी. उम्मीद भारतीय कबड्डी के खिलाड़ियों से यही रहती है कि हमारा, क्योंकि इस खेल के अंदर हमेशा ही दबदबा बना रहा है, हम इसी तरह से जीत हासिल करें. मूविंग ऑन टू सॉफ्ट टेनिस, जैमीना रजिस्टर्ड अ क्लीन 4-0 स्वीप अगेंस्ट पाकिस्तान हुसैन अरायन एंड मेन सिंगल्स ग्रुप डी, वाइल आद्या तिवारी फेल 1-4 टू थाईलैंड अलीशा जिलगर इन वुमेन सिंगल्स ग्रुप डी. पेंसिंग की भी अगर हम बात करें तो सचिन और हिमांश सिंह दोनों, सचिन हमारी तरफ से थे पूल फाइव के अंदर और हिमांश सिंह रहे पूल वन के अंदर. उन्होंने चौथे स्थान पर अपने अपने पूल के अंदर मेंस इंडिविजुअल फॉयल में फिनिश किया. वहीं अगर कराटे की बात करें तो चेतन भट्ट सपोर्ट हार्ट ब्रेक इन द मेंस 84 केजी कुमिती सेमीफाइनल, नैरोली मिसिंग आउट ऑन अ स्पॉट इन द फाइनल वाया द सेंचुरी रूल. अब स्विमिंग की ओर बढ़ते हैं. आर्यन नेहरा टच द वॉल फोर्थ एंड फाइनल बी ऑफ द मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल. वुशु

हमारी तरफ से देवी हंजाबाम फिनिश नाइन्थ इन द वुमेन्स नानक्वान फाइनल. एंड मूविंग ऑन, यहां से भी आगे आएंगे सेपक्तरों की तरफ, जहां इंडिया की कैंपेन सफर्ड अनदर सेटबैक फॉलिंग 0-2 मलेशिया इन मेंस टीम रेगू ग्रुप बी. एंड नाउ द ब्राइटर न्यूज ऑफ द डे. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं. बॉक्सिंग के अंदर साक्षी चौधरी हैज एंटर्ड इनटू द राउंड ऑफ 16. जी हां, शी डिलीवर्ड अ टैक्टिकल मास्टर क्लास इन द फाइनल राउंड, मैनेजिंग द रिंग स्मार्टली टू सील अ यूनानिमस 5-0 विक्ट्री ओवर पेरिस ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आयरा विलेगस. कंट्रोलिंग द पेस, landing precise shots and thwarting Villegas' attempts to bridge the gap, the Indian pugilist cruised through to the round of 16. Well, ab Sakshi ke liye yahan se aage ka safar dikhata hai ki she'll be up for a pre-quarter final clash against Kazakhstan's reigning world champion Alua Balkibekova. इसके बाद एक नजर बैडमिंटन की ओर भी आज डाल लेते हैं. बैडमिंटन में कहूंगी मैं कि पीवी सिंधु का के साथ आज बैडमिंटन की जो शुरुआत हुई, वहां पर हमने देखा कि कैसे पीवी सिंधु वाज अप अगेंस्ट जापानीज अकाने यामागुची. शुरुआत के मैचेस में या गेम्स में कहेंगे, पहला जो गेम था जहां पर पीवी सिंधु ने उस गेम को अपने नाम किया 23-22 से, वेरी नैरली बट अ वेरी गुड गेम दैट वी गॉट टू विटनेस, शी वाज एबल टू विन. लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गेम के अंदर, पीवी सिंधु गॉट बीटन बाय द जापानीज 21-18 से. और तीसरा गेम फिर से क्विक सक्सेशन में पीवी सिंधु हार गई अपनी जापानीज ओपोनेंट से 21-11 से. As a result, that did not go in India's favor. उसके बाद आई उन्नति हुड्डा, जिन्होंने गेम नंबर 2 में, मैं कहूंगी उन्नति हुड्डा की तरफ से भी परफॉर्मेंस बैडमिंटन में निराशाजनक ही आज रहा, क्योंकि जो इसमें भी हमने देखा वहां पर भी शी वॉज इनिशियली trying to win the game but then went on to lose the game ultimately. Disappointing from Unnati Hooda as Tomoka Miyazaki from Japan made an exemplary comeback to take the second game away from her 21-18. पहला गेम तो वो हार ही चुकी थी 16-21 से, और दूसरा गेम दोबारा से वो हार गई, जिसकी वजह से यहाँ पर भी वुमेन्स टीम का जो क्वार्टर फाइनल में कंटेंशन हम चाह रहे थे, क्योंकि ये पूरा एक टीम गेम है, वो हमारे लिए बहुत हमारे फेवर में नहीं गया. एंड थर्ड मैं बात करूंगी यहाँ पर कि उम्मीदें अभी बनी हुई हैं गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली से, लेकिन उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ओपनिंग मैच जरूर हमने जीत लिया है अगेंस्ट यूकी फुकुशिमा और मायू मत्सुमोतो. दिस इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली, जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं, गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली. लेकिन अगर इनको हमारे सेमीफाइनल के होप्स को लाइव रखना है तो बहुत जरूरी है कि ये गेम भी ये जीते. So far, it's not been too bright a news overall from the world of badminton. And shooting once again turned out to be the biggest disappointment, should I say, of the day today. Because bahut ummeed thi 10-meter air rifle mixed team finals ke andar, lekin rifle shooting ke andar hamara jo raha, India finished 4th and hence missed out on a medal. Well, Elavenil, Valarivan or Parth Mane were shattered by the result as they finished 4th with 376.3 points. So far, the best news I can say has come only from the world of boxing. Lekin din abhi bahut lamba hai, cricket bhi aane wala hai, jahan pe Bharat ka medal contention rahega. We'll keep bringing these updates to you every hour. For now, it's a goodbye.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स के साथ। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त है अभिनव मुंशी और हम लेकर आ गए दोस्तों आपके लिए सुबह 11:30 बजे का अपडेट। सबसे पहली जो न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ वो है बैडमिंटन की दुनिया से। कोई अच्छी खबर तो लेकर नहीं आ रही हूँ लेकिन निराशाजनक खबर ही आपको दूंगी कि भारत का बैडमिंटन के अंदर का जो सफ़र है वो आज आकर समाप्त हो गया। जी हाँ, हम जापान से 3-1 से हार गए और इसके साथ ही साथ क्वार्टर फाइनल्स के आगे हम प्रवेश भी नहीं कर पाए। भारत की तरफ से पीवी सिंधु का जो पहला मुकाबला था उनकी जापानीज ओपोनेंट अकाने यामागुची से वो तेज 11-18, 11-11, 11-21 से हारी। उन्नति हुडा लॉस्ट तोमोका मियाजाकी आल्सो 16-21, 18-21 और फाइनली त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला भी उन्होंने भलाई हराया था यूकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोता को 21-17, 21-16 से। इकलौती जो हम कहेंगे जीत इसके अंदर भारतीय खिलाड़ी को मिली लेकिन वो जीत अपने आप में काफ़ी नहीं थी क्योंकि ये एक गेम था जो इन दोनों ने हमारे लिए जीता। और फाइनली तन्वी शर्मा हार गई नोजोमी ओकुहारा से 21-12, 21-10। यानी अंत में हमने देखा कि 2-3-1 से भारतीय टीम जापानियों से हार गई।
2: मगर देयर इज गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस। जी हाँ, इंडिया ने जीत वहां पे पाई टेबल टेनिस के अरीना में से। इंडिया वन देयर मैच 3-2 एंड द स्टार फॉर इंडिया वाज यश्विनी गोरपले हु वन 2 मैचेस। याद दिलाएं इस मैच में इस टाइम इंडिया वाज डाउन 2-1 मगर 3-2 से जीत मिली और फिर श्रीजा अकुला थैंक्स टू हर इंडिया थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स। और नॉर्थ कोरिया से हमारा सामना होगा क्वार्टर फाइनल्स में 3:50 में। सो लुक आउट फॉर दैट। एंड नाउ सम न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्विमिंग।
1: Yes, Abhinav, and now I bring in the bright news for all our listeners because अगर हम स्विमिंग की बात करते हैं तो भारतीय स्विमर्स की जो टीम है 4x400 meter मेडले रिले फाइनल के अंदर वो क्वालिफाई कर गए हैं। ये फाइनल होगा हमारा 2:55 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये टीम हमारी बनी है ऋषभ दास, दानुष सुरेश, बेनेडिक्शन रोहित और

0: आकाशवाणी की वजह से, जिन्होंने कुल मिलाकर अपनी जगह आज इस फाइनल्स रिले फाइनल्स के अंदर दर्ज कर ली, बिकॉज भारत ने समाप्त किया 7th स्पॉट पर फ्रॉम अ टीम टोटल टीम ऑफ 16 टीम्स दैट वर प्रेजेंट इन द हीट्स.
1: And now moving on to cricket, all the eyes are on our women in blue, jinka aaj chal raha hai gold medal match against Sri Lanka. It's a repeat of the Asia Cup final. Bas India ko repeat karna hai jo unhone kara tha Asia Cup final mein, aur jeet hasil karni hai kyunki India won the toss. They have elected to bat first, and as we are talking, Smriti Mandhana has hit a superb boundary. So best of luck to the Indian team.
0: Yes, indeed. And hopefully India finishes on a good note over there against Sri Lanka. Now to carry on the good news, soft tennis ki duniya mein aapko bata de ki Bharat ne Pakistan ko hara diya. Ji haan, Jai Meena took on Aryan Hussain in the men's singles group D clash, jahan par unhone outplay kar diya Pakistan ke Aryan Hussain ko 4-2, 4-0, 4-2, 4-0 se. And as a result, we were able to secure that victory. Lekin soft tennis ki duniya mein ek khushkhabri jahan main aapko de rahi hu, wahi pe aapko ek khabar aisi भी दूंगी जो थोड़ा सा सेटबैक रहा है हमारे भारतीय खिलाड़ी के लिए, क्योंकि आद्या तिवारी सफर अ 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा ज़ेलगर इन वुमेन सिंगल्स ग्रुप डी.
1: एंड गुड न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग इज साक्षी चौधरी आर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने हराया है पेरिस ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एरा वेलिगास को इन द वुमेन्स 51 केजी राउंड ऑफ 32, और हराया भी है कॉम्प्रिहेंसिवली. तीनों राउंड्स मिले साक्षी को एंड शी रजिस्टर्ड अ 5-0 विन. एंड याद दिलाएं आर आर्मी मैन जादूमणि सिंह, ही इज इन एक्शन एज वेल अगेंस्ट चांद बहादुर थापा इन द 55 केजी राउंड ऑफ 32.
0: Right, and the last update and a quick one that we bring to you is from the world of karate, but not a lot of good news, because karate mein women's Kumiti 55 kilogram ki category mein Alicia suffered a 1-6 defeat against Indonesia's Kok Istri Agyung Sanastiraini in the round of 16, aur Chetan Bhagat bhi apna bronze medal match aaj haar gaye Chinese Taipei ki Chung Myong Yu se. As a result, not a lot of good news from the world of karate, Abhinav.
1: But we are hoping for much better news from the world of cricket. And of course, we have some big matches to look forward to, big encounters to look forward to for India today. So please tune in an hour at Akashwani 11:30. We will give you the latest update from Asian Games, from Aichi Nagoya. And hopefully, we have some better news and some great news for all you Indian fans out there. Thank you so much for tuning in on Akashwani.
2: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் குறித்த தற்போதைய நிலவரம் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: மேகலை, இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரம் தான் கேட்கவிருக்கிறீங்க. தொடர்ந்தடைஞ்சிருங்க.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है इस वक्त दोस्तों अभिनव पुंछी, और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे बड़ी खबर आज के दिन की, जो कि है भारतीय महिलाओं का क्रिकेट का मुकाबला। दे आर प्लेइंग द गेम अगेंस्ट श्रीलंका, इट्स द फाइनल मैच एंड वी डू होप इन दिस our hopes are resting on the Indian women cricketers that they'll be getting us the gold today, the first time in this Asian Games when the Indians can eye a gold medal and hope for that. भारतीय कप्तान हमारी तरफ से हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले आज बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, and that has proven to be very lucky for the Indians because they are off to a frolicking start, jahan 14.3 over mein bhartiya mahilaon ne abhi tak 141 on board bana diye ek wicket gawakar, jo ki gaya Shefali Verma ka, jinhone aaj 48 run banaye 29 balls mein. She just missed out on a half century by a mere two runs over there thanks to a stupendous catch that was caught by Kavya Kavindi on the ball of Chamudi Praboda. Much needed wicket out there for the Sri Lankans because this partnership was getting very, very stable and sturdy between Shefali Verma and of course Smriti Mandana, but they were able to get a breakthrough on 99 runs. So a good start, Abhinav, for the Indians out there.
3: Yes, a brilliant start by our Indian women in blue, and hopefully they keep going great guns. And unfortunately, टेबल टेनिस के अरीना से इतनी अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि एक बहुत टफ इंकाउंटर था इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम का साउथ कोरिया के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल्स मैच में। हरमीत देसाई, मनुषा और मानव ठक्कर तीनों अपना सिंगल्स मैच हार चुके हैं, और उस हार के बाद, वो 3-0 जीत के बाद, साउथ कोरिया ने एडवांस करा है क्वार्टर फाइनल्स में। बट हमारे लिसनर्स डिसअपॉइंट मत हुई है, क्योंकि हमारी इंडियन विमेंस टीम जो टेबल टेनिस की टीम है वो अपना मैच जीती थी प्री क्वार्टर फाइनल्स का थाईलैंड के खिलाफ 3-2 से, और आज हमारा क्वार्टर फाइनल है नॉर्थ कोरिया के खिलाफ at 3:50 PM.
2: जी, और जैसे हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं, अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि हरमनप्रीत कौर जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी। जी हाँ, 73 रनों पर हरमनप्रीत कौर आज आउट हो गई हैं। 42 गेंदों में 73 रन उन्होंने आज बनाए भारत के लिए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के मौजूद थे, एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 173.8, द विकेट कमिंग जस्ट एट द राइट टाइम। एंड वी नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स फेंसिंग, वेयर द इंडियन मेंस individual foil campaign has come to an end in the round of 32 with both fencers crashing out against the Kazakh opposition. Himansh Singh Sanasam also succumbed to a 9-15 defeat against Ghalem Nurumov, while 17-year-old prospect Sachin met an identical fate, falling 9-15 to Timofey Semyonov. So भारतीय मेन का इंडिविजुअल फॉइल कैटेगरी के फेंसिंग में भी आकर एशियन गेम्स 2026 में समापन हो गया है।

0: यहाँ एंड लेट्स टॉक अबाउट बैडमिंटन, जिसमें विमेन्स टीम का कैंपेन खत्म हुआ है. अनफॉर्चुनेटली इंडिया लॉस्ट ऑल दे थ्री सिंगल्स मैचेस टुडे. पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा एंड तन्वी शाह ऑल लॉस्ट द सिंगल्स मैचेस. द ओनली ब्राइट स्पॉट वॉज गायत्री गोपीचंद एंड ट्रिक्सा जॉली हु वन द डबल्स मैच. मगर निराश मत होइए, क्योंकि हमारी मेन्स टीम क्वार्टर फाइनल में खेल रही है जापान के साथ. 11:30 बजे ये मैच शुरू होना था एंड द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट अबाउट टू बिगिन. सो होपफुली द इंडियन मेन्स टीम गेट्स अस सम गुड न्यूज फ्रॉम द बैडमिंटन कोर्ट्स.
1: जी, एंड अ स्लाइट करेक्शन टू बी मेड ओवर देयर कि स्मृति मंदना अभी भी क्रीज पर टिकी हुई है. जी हाँ, 73 रन उन्होंने बनाए हैं, 43 गेंदों में उनका विकेट नहीं गया है. हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की जो कप्तान है, उनका विकेट जा चुका है. 17 गेंदों में 19 रन का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया. बट स्मृति मंदना ऑल होप्स रेस्टिंग ऑन हर शोल्डर्स टुडे, क्योंकि शायद आज वो दिन भी हो सकता है जहाँ हम उनके बल्ले से 100 रन यानी सेंचुरी आते हुए देख ले. ही इज विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट. इंडिया गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, कमिंग बैक नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट अपडेट दैट वी ब्रिंग टू यू, जो है कबड्डी की दुनिया से, जहां भारत ने आज साउथ कोरिया को 63-31 से हरा दिया इन द मेंस कैटेगरी, एंड दैट वाज अ वेरी कन्विंसिंग सॉलिड विन. अब भारत बांग्लादेश को कल फेस करेगा इन द ग्रुप स्टेज अगेंस्ट चाइनीज तेपाई, विच विल बी द नेक्स्ट गेम कमिंग अप टुमारो इन कबड्डी.
0: Of course, a great news there from Kabaddi, and also great news from boxing, because Sakshi Chaudhary has beaten the Paris Olympics bronze medalist Era Villegas and has advanced to the women's round of 16 in boxing 51 kgs. And please do not miss Jadumani Singh ka bout hone wala hai Chandra Bahadur Thapar ke khilaf, 55 kg round of 32. This is going to happen at 2 p.m. And of course, we will be back with the latest updates and hopefully Smriti Mandana ki century ke saath 12:30 baje only on Akashwani. So hopefully we'll get you more good news from Aichi Nagoya Asian Games 2026.

0: टारगेट दिया है श्रीलंका को गोल्ड मेडल मैच में 217 का। जी हाँ, इंडिया में 216 for 3। टॉप स्कोरिंग वाज स्मृति मंदना विद 79, शिफाली वर्मा 48 एंड अ स्टनिंग 22 बॉल 49 बाय ऋचा घोष। श्रीलंका जवाब में एक विकेट ऑलरेडी अपना खो चुके हैं, इमेश सिदुल्यानी आउट हो गए, मगर कैप्टन फैंटास्टिक चिमारी अट्टापट्टू इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। याद दिलाएं, ये वही हैं जिन्होंने 83 नॉट आउट मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ, एंड दैट हैड मेड श्रीलंका चेज अ रिकॉर्ड टारगेट ओवर देयर। सो इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, इट्स हाई स्कोरिंग, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम वी अपडेट यू देयर इज सम विकेट्स एंड होपफुली शिफाली दिस द कैप्टन फॉल्स।
1: Well, let's hope for the best for India. Always rooting for India. Go India, go the women in blue. And moving on to the next quick update. दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं from the world of fencing. Fencing में तनिष्का खत्री वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी भारत की तरफ से बनी है जिन्होंने अपना राउंड ऑफ 32 में वुमेन्स एपी इंडिविजुअल को जीत कर विद अ कन्विंसिंग 15-10 की विक्ट्री थाईलैंड के नटापापट संगनियो के ऊपर, उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गई टूवर्ड्स द राउंड ऑफ 16. जी हाँ, मतलब दिस इज गुड न्यूज from the world of fencing because Tanishka Khatri वो इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं जो अब round of 16 में South Korea की former world champion और Asian Games की gold medalist Song Se Ra के साथ अब उनका आमना सामना होगा। वहीं फेंसिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वुमेन्स एपी इंडिविजुअल में मितवा जेसंगबाई चौधरी या फिर मेंस इंडिविजुअल फॉयल में भी हम अगर देखें हेमश सिंह सनासम या उसके साथ साथ सचिन, ये सारे ही प्लेयर्स अपने अपने राउंड से यानी राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गए।
0: थैंक यू सो मच फॉर दैट साक्षी, अपडेट कमिंग इन फ्रॉम फेंसिंग। मगर बैडमिंटन से भी आपको अपडेट दीजिए तो India versus Japan quarter finals are on right now aur action mein hai Lakshya Sen, unke samne Kodai Naroka aur inka bahut hi close encounter chal raha hai, 1-1 chal raha hai kyunki pehla jo set tha wo Lakshya Sen haare the 21-11 se, dusra set jeete 21-5 se, abhi 19-14 se piche hai Lakshya Sen. Yaad dilaye iske baad hamari Satwik Chirag ki jodi hone wali action mein, to hopefully this tie can be turned around and India has a chance because our Indian women are already out. The women's team campaign has ended because they lost earlier today to Thailand that was a very very disappointing performance by the Indian women team because sare singles matches hum log hare hain and only Gayathri Gopichand and Teresa Jolly gave us some good news.
1: Right, and now moving on to the world of shooting, जहां सुबह से हमारे पास शूटिंग में कुछ खास अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, वहीं अगर अब हम स्कीट की बात करें तो मेन्स स्कीट के जो आज प्रदर्शन रहे हमारे भारतीय शूटर्स का मेन्स स्कीट के अंदर वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग रहे। मतलब अनंजीत सिंह नरूका सेकंड प्लेस पर अभी बने हुए विद अ टोटल ऑफ 96 पॉइंट्स एंड ही हैज पुट हिमसेल्फ इन द प्राइम पोजिशन टू क्वालिफाई फॉर द इंडिविजुअल फाइनल्स इन द मेन्स स्कीट इवेंट। वहीं मिराज अहमद खान इस समय 23rd प्लेस पर है विद अ टोटल ऑफ 91 पॉइंट्स और भवतेक सिंह गिल 35th पोजीशन पर है विद अ टोटल ऑफ 86 पॉइंट्स। तो यानी अनंतजीत सिंह नरूका ने अभी भी भारतीय शूटर्स और शूटिंग के कैंपेन की उम्मीदों में वो रोशनी रखी हुई है डालकर कि हो सकता है जिस तरह से वो 96 पॉइंट्स के साथ अभी बैठे हुए हैं, ही स्टैंड्स इन अ वेरी गुड

0: place to qualify for the individual finals also. Agar women's key standings ki hum baat karte hain, jo aaj ki hamari mahila shooters ka pradarshan raha hai women's heat mein, to Raiza Dhillo has moved up to the fifth place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhalewal is samay ninth position par hai with a total of 89 points aur Maheshwari Chauhan is samay 16th sthan par hai with a total of 85 points.
1: थैंक यू फॉर दैट अपडेट अगेन साक्षी. और एक और आपको दे दें जाते हुए बस ब्रेकिंग न्यूज खबर. गुड न्यूज अगेन फॉर द इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम. श्रीलंका हैव लॉस्ट दिस सेकंड विकेट, सो होपफुली जस्ट 8 मोर टू गो. बस 8 विकेटें हैं और गोल्ड तय है हमारे. दैट्स ऑल फ्रॉम अस ऑन दिस अपडेट फ्रॉम आकाशवाणी. प्लीज स्टे ट्यून एंड एट 1:30 यू कैन कम बैक फॉर अनदर अपडेट.
0: And just to carry on with a quick one also over there, because we have a little amount of time, दर्शकों आप दोस्तों आपके साथ, तो quickly आपको बता दें कि भारत की जो अभी भी मेडल टैली में टेबल स्टैंडिंग है वो 12वें स्थान पर बनी हुई है. कुल मिलाकर हमारे पास अभी 6 मेडल्स या 6 टोटल मेडल्स हैं, जिसमें 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं. लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट दीज हैव कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग. दीज हैव कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग प्राइमरली. बट For now, hoping that India gradually climbs up, it's a goodbye.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya. You were listening to

0: ஆறு. நேர்களை கேட்கலாம். ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த கள நிலவரத்தினை.
1: Welcome, a very warm welcome, Jai Hind, as we bring to you the latest update at 1:30 PM on Akashvani. Main hu Sakshi Mandwal, dosto, aur mere saath is waqt hai Abhinav Punchi, and we bring you the big news ki Bharat ko Asian Games 2026 ka pehla gold medal mil chuka hai. Ji haan, wo lekar aayi hamare liye hamari cricket ki bhartiya mahila ki team. Yes, the first gold that comes in for India today. They have gone on to create history for the Indians, because this is always going to be special. The first goal of the ongoing Asian Games 2026. They defeated England by a huge margin of 147 runs. Bharatiya mahilaon ne 216 run banaye unke given stipulated 20 overs mein for the loss of 3 wickets, and then they went on to defeat and completely choked the Sri Lankans for just mere 69 runs. Abhinav, what a day to celebrate this moment, to cherish this moment.
2: जी हाँ, श्रीलंका को हराया है हमारी भारतीय महिलाएं ने, और क्या ट्रिमेंडस विक्ट्री थी श्रीलंका के अगेंस्ट, बिकॉज इंडिया हैड पुट अप अ मैमथ टोटल ऑफ 216 for 3, और उसके बाद श्रीलंका जो जिन्होंने अपनी रिकॉर्ड चेस करी थी सेमीफाइनल्स में, आज कुछ नहीं कर पाए. इट वॉज अ डेमोलिशन डर्बी जैसे कहा जाता है. 69 ऑल आउट, India winning by 147 runs, and the Indian women have defended their gold which they won in Hangzhou 4 years ago. Fantastic performance with the bat by Spriti Mandana with 79, Shefali Verma 48, Richa Ghosh at 22 ball 49, aur uske baad wickets mein to kamal dikhaya DP Sharma with 3 wickets, Shefali ka fir se all-round performance, 2 wickets, Shriyanka Patil with 2 wickets as well, and Shri Channi with 2. So कमाल के परफॉर्मेंस, और इंडिया के पास पहला गोल्ड आ चुका है. जी हाँ, सुबह से आप लोग हमारे अपडेट सुन रहे होंगे, थोड़े से निराश हो रहे होंगे क्योंकि इंडिया का आज इतना अच्छा दिन नहीं गया, मगर साक्षी, व्हाट अ ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस विक्ट्री, एंड आई थिंक पूरे नेशन का जो मूड है आज is going to get much better, and everybody is going to have a smile on their face.
1: Yes, indeed. Aur aaj ye chehre ki hansi hatni hi nahi chahiye, because hamari ladkiyon ne hame itne sare reasons diye celebrate karne ke liye. Sabse upar to gold medal rahega hi rahega, lekin uske sath sath dosto aapko ye bhi bataye ki ye bhartiya mahila cricket team ke liye 8th लगातार 8वीं T20 इंटरनेशनल की जीत है. यस, दे हैव गॉन ऑन टू विन 8 T20 इंटरनेशनल्स ऑन अ ट्रॉट, एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. और उसके साथ साथ श्रीलंका ने आखिरी बार भारत को 2024 के एशिया कप के फाइनल्स में हराया था, वो हम सब जानते हैं. उसके बाद से भारतीय महिलाएं उनको 8 बार T20 इंटरनेशनल मैचेस में हरा चुकी हैं. और एक और बहुत अच्छी खबर जो है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, वो ये है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये जो 147 रन के मार्जिन से श्रीलंका को हराया है आज, वो अभिनव आज तक का सबसे बड़ा डिफीट मार्जिन है जो भारत ने किसी भी ओपोनेंट को दिया होगा. 147 इज द बिगेस्ट मार्जिन बाय व्हिच इंडिया हैज डिफीटेड एन ऑपोजिशन नेशन इन अ T20 इंटरनेशनल.
2: इट्स बीन अ ग्लोरियस सितंबर इंडियन वुमेन के लिए. एशिया कप में उन्होंने धमाल दिखाया, और आज उन्होंने एशियन गेम्स में सुपर धमाल दिखा दिया है ये जीत पाकर. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रिमेंडस एफर्ट बाय द इंटायर इंडियन वुमेन्स कंटिजेंट, कोचेज का कंटिजेंट, सबको बहुत ढेर सारी बधाइयां, और हमारे देशवासियों को भी बहुत ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि अब इंडिया का गोल्ड का खाता खुल चुका है. जी हाँ, एंड इट इज नॉट द ओनली गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम द एशियन गेम्स, वी हैव मोर गुड न्यूज फॉर यू, बिकॉज बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट कोडाई नारोका के खिलाफ. लक्ष्य सेन ने अपना मैच, पहला गेम हारा लक्ष्य सेन ने 11-21 से, दूसरा गेम जीता 21-5, मगर तीसरे गेम में ही वॉज डाउन 14-19, फिर भी कम बैक करके उन्होंने वो गेम जीती 21-19. वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट को हराया, इंडिया को वो 1-0 की लीड दी. एंड अनदर गुड थिंग इज सात्विक चिराग, हमारे फेवरेट डबल्स पेयर, अभी एक्शन में है. वो पहली गेम जीत चुके हैं अपने जापान के ओपोनेंट्स के अगेंस्ट, एंड साक्षी कैन गिव अस डिटेल्स अबाउट दैट.
1: यस इंडीड, पहला गेम तो वो अपना जीत चुके हैं. हम बात करें सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की अगेंस्ट द ओपोनेंट्स होकी और कोबायाशी.

लेकिन सेकंड गेम के अंदर भी इस समय बहुत तगड़ी फाइट दोस्तों चल रही है. जापान हैज ओनली अ 2 point लीड राइट नाउ ओवर द इंडियन ओपोनेंट्स, बिकॉज इनफैक्ट वो 2 point की लीड भी अब एकदम खत्म ही हो चुकी है, बिकॉज भारत के पास इस समय 18 पॉइंट्स है सेकंड गेम में और जापान के पास है 17. यानी गेम को मैच पॉइंट पर लाने के लिए इंडिया को 2 और अंक, इनफैक्ट कहना चाहिए जीतने के लिए 2 और अंक कमाने लगातार. अगर ऐसा होता है तो वेल India should be able to give this entire match in their favor. But right now, keeping all those hopes and faiths up, it's time for a moment for us to just sit back and enjoy the victory that has come the way and through the Indian women's cricket team. A very big milestone achieved over here by the Indian girls. Kudos to India. जय हिंद हमारे हर देशवासी को. और इसके साथ ही हम कहेंगे कि यहाँ से ये जो खुशियों की हम जो आपको खबर और अपडेट लेके आ रहे हैं, ये सिलसिला शुरू हो जाए और बरकरार रहे. फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत. गुड बाय.

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
0: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
1: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
0: ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
0: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
1: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में

0: होस्ट से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
1: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
0: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
1: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओ, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
1: जी,
0: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
1: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
0: लेकिन श्रोताओ, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
1: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
0: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
1: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
0: हटिए सामने से। खैर श्रोताओ, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
1: जी।
0: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
1: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
0: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
1: जी,
0: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
1: बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दोपहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
0: आशोताओ, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
1: जी।
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
1: जी।
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
1: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओ, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
1: जी।
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
1: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
0: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही लेकिन अब
1: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
0: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
1: जी,
0: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
1: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
0: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044055 पर

0: और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए सीआईटी एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है,

और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत, और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Deeksha, Digital Infrastructure for School Education. An initiative of the Ministry of Education, Government of India. Brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Deeksha, Deeksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. शीर्षक है चतुर्मूर्ख.
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए.
2: चतुर्मूर्ख.
4: तीन मूर्ख थे. वे कहीं जा रहे थे. रास्ते में ही रात हो गई. वे पास के एक गांव में रुक गए. उन्हें भूख भी लगी थी. मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई. तीनों ने मिलकर खीर बनाई. भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई. बची हुई खीर कौन खाएगा? इस बात पर बहस छिड़ गई. बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा. तीनों लेट गए. वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे. दो तो जल्दी सो गए. तीसरे को नींद न आई. वो सोचता रहा.
5: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले?
4: धीरे धीरे सवेरा होने लगा. न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा. लेकिन वो चतुर था. वो चुपके से उठा.

0: सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार-बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
1: अरे उठो, अरे उठो, उठो, अरे उठो,
2: आए उठो, उठो,
1: अरे उठो,
3: बैग बैग के पैक, बैग बैग।
0: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
4: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
1: अच्छा?
4: हाँ। परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, आहा, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह वाह।
0: दूसरे ने कहा,
5: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बना।

0: नौकर चाकर थे, मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी।
1: ओ।
0: लोग झुक झुक कर सलाम।

0: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो।
2: हाँ,
1: मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
2: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
3: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
4: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
1: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ,
2: क्या
1: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
4: मैं क्या करता।

0: Holy!
1: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
2: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
3: नहीं खाता, तू क्या करता? अपनी जान से हाथ धोता?
4: तुम झूठ बोलते हो।
2: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
3: जगाता कैसे? तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
1: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
5: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: நேர்களே, கேட்டீர்கள் தேசிய கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் வழங்கும் விளம்பரத்தாரர் நிகழ்ச்சி.

0: is Akashwani. We now take you over to Ekta Nagar, Kevadia, Gujarat for the live broadcast of the 72nd National Film Awards ceremony being organized in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. Our commentators are Neelam Thapliyal in Hindi and Shailendra Singh Jadeja in English.
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको एकता नगर केवड़िया गुजरात लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम थपरियाल हिंदी में और शैलेंद्र सिंह जडेजा अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, मैं नीलम थपलियाल अपने साथी अंग्रेजी समीक्षक शैलेंद्र सिंह जाडेजा एवं आकाशवाणी वडोदरा और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर से 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने में

0: रेडियो से जुड़े सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ।
1: नमस्कार। सिनेमा लवर्स अक्रॉस द नेशन एंड अराउंड द ग्लोब, वेयर नर्मदा फ्लोज विद अ टाइमलेस ग्रेस अंडर सरदार्स गेज इन दिस सेक्रेट स्पेस, द सिल्वर स्क्रीन व्यूज इट्स मैजिक अनटोल्ड टू क्राउन इंडियन सिनेमाज मास्टर्स इन गोल्ड। अलॉन्ग विथ माई को कमेंटेटर मिस नीलम थपलियाल and the team of Akashwani Vadodara in Ahmedabad, I, Dr. Shailendra Singh Jadeja, welcome our listeners to the live broadcast of the landmark 72nd National Film Awards. Good afternoon.
0: जी हाँ श्रोताओं, इस समय हम मौजूद हैं उस ऐतिहासिक समारोह स्थल पर जहां दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी आकाश को छूती खड़ी है। आज यहाँ भारतीय सिनेमा के वर्ष 2024 के श्रेष्ठ कलाकारों, फिल्मकारों और तकनीशियनों को देश के प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। नर्मदा की लहरों की गूंज के बीच आज पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह ने दिल्ली की सीमा लांघी है और यह ऐतिहासिक क्षण अपने आप में एक फिल्मी पटकथा जैसा लगता है।
1: फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हाफ अ सेंचुरी दिस हिस्टोरिक सेरेमनी हैज मूव्ड बियॉन्ड द नेशनल कैपिटल टू द मैजेस्टिक बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा। टुडे एकता नगर सर्व्स एज द अल्टीमेट क्रॉसरोड्स वेयर आर्ट, कल्चर एंड नेशनल यूनिटी कन्वर्ज।
0: श्रोताओं, कुछ कहानियां पर्दे पर उतरती हैं और कुछ सीधे दिल में। सिनेमा उन दोनों के बीच का वह पुल है जहां भारत अपनी कहानी खुद सुनाता है। कहानियां हमारी विरासत हैं, किरदार हमारी पहचान और सिनेमा वह आईना है जिसमें दिखता है हमारा महान, अतुल्य, समृद्ध, गौरवशाली, विविधतापूर्ण, शक्तिशाली, सांस्कृतिक, अखंड भारत।
1: To truly appreciate the weight of this afternoon, we must look back to 1954 when the Government of India instituted these honours as the State Awards for Films. Established under the Ministry of Information and Broadcasting, their founding vision was to promote cinematic excellence, encourage artistic craftsmanship, and build a unified national identity through the medium of films.
0: श्रोताओं, आज मेरे सामने जो दृश्य है उसे केवल भव्य कहना पर्याप्त नहीं होगा। सभागार रोशनी से जगमगा रहा है, मंच पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रतीक चिन्ह अपनी पूरी गरिमा के साथ दिखाई दे रहा है। सामने की पंक्तियों में भारतीय सिनेमा के जाने माने चेहरे बैठे हुए हैं। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन, धनुष, ममूटी, संजय मिश्रा, रणदीप हुड्डा, अनंत नाग और मनोज मुंतशीर जैसे कई जाने पहचाने चेहरे देख सकते हैं।
1: Over the past 7 decades, the National Film Awards have evolved into the highest and most respected cinematic honor in our country. Unlike commercial award shows driven by box office collections, these awards celebrate artistic depth, socio-cultural relevance and technical mastery across all 22 constitutional languages, bringing mainstream blockbusters, regional gems and independent non-fiction onto the same prestigious national platform.
0: इन पुरस्कार पाने वाले चेहरों पर किसी पर उत्सुकता है तो किसी पर वर्षों की मेहनत के बाद मिलने वाले सम्मान की प्रतीक्षा। ऐसे अवसर पर हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। श्रोताओं, सिनेमा की यात्रा भी ऐसी ही है, कभी तालियां मिलती हैं तो कभी आलोचना।
1: And now, let us listen to what Secretary INB Shri Chanchal Kumar ji has to say as his welcome address begins.
2: गौरव का विषय है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केवल सिनेमा की उत्कृष्टता का सम्मान नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास की यात्रा का आईना भी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन पुरस्कारों में सम्मानित होने वाली फिल्में हमें बदलते भारत की झलक, भारत की कहानियाँ और इसमें भारत के लोग दिखाई देते हैं।

0: हमें प्रसन्नता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत ने जो आत्मविश्वास अर्जित किया है, भारतीय सिनेमा उसका साक्षी रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से इसमें देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की उपस्थिति दिखाई देती है। आज फीचर फिल्म श्रेणी में 34 भाषाओं की कुल 400 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से ज्यूरी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 22 पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। नॉन फीचर फिल्म में 24 भाषाओं की 161 फिल्मों के आवेदन थे, जिसमें से विभिन्न श्रेणियों में आज 23 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सिनेमा में उत्कृष्ट लेखन के लिए 3 पुरस्कार दिए गए हैं। इन पुरस्कार के चयन की पूरी प्रक्रिया में अपनी प्रतिबद्धता, परिश्रम और विशेषज्ञता योगदान करने वाले सभी श्रेणियों के सम्मानित ज्यूरीगण को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सिनेमा, जिसे कभी केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था, आज सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुका है। गढ़वाली और तुलु जैसी भाषाओं में बनी फिल्मों की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति यह दर्शाती है कि भारतीय सिनेमा का निरंतर विकास हो रहा है। लोग अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के प्रति निरंतर और अधिक जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं। हमें खुशी है कि बीते वर्षों में भारतीय सिनेमा ने तकनीक में ही नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट वैश्विक पहचान बना ली है। इस वर्ष की विजेता फीचर फिल्मों में भारतीय सिनेमा की व्यापकता और रचनात्मक ऊर्जा स्पष्ट दिखाई देती है। आर्टिकल 370 का प्रभावशाली ऐतिहासिक कथानक, श्रीकांत में दृढ़ संकल्प और संघर्ष की प्रेरणादायी कहानी, मिथ्या का गहन आत्मविश्लेषणात्मक तथ्य, ब्रह्मयुगन का वातावरण, सिनेमाई शिल्प और उत्कृष्ट प्रस्तुति, इसी प्रकार पुष्पा 2 और कल्कि 2898 AD जैसी लोकप्रिय फिल्मों की सफलता मुख्य धारा के सिनेमा की निरंतर लोकप्रियता को दर्शाती है, जबकि चलचित्र खौन और कमिटी कुरुलू जैसी फिल्म भारत की समृद्ध क्षेत्रीय कहानी कहने की परंपराओं को भी सामने लाती है। नॉन फीचर फिल्म के विजेताओं ने भी उन कहानियों और जीवन की वास्तविकताओं को सामने लाया है जो अक्सर हमारे ध्यान से ओझल रहती थी। भंगार, श्रम, जीविका, संघर्ष और मानवीय गरिमा से जुड़े परिस्थितियों के बीच जीने की इच्छा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। रामनामी समुदाय की सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक प्रस्तुत करती है। मुझे खुशी है कि आज अनंतनाग साहब को मैं सामने देख रहा हूँ। मालगुड़ी डेज, अंकुर, हमारे किशोरावस्था की खूबसूरत स्मृतियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कन्नड़ के साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं की 300 से भी अधिक फिल्मों में स्मरणीय चरित्र निभाए। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के सम्मान के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हर नई आवाज़, हर नई भाषा और हर नई कहानी के साथ भारतीय सिनेमा अधिक समावेशी, सशक्त और वैश्विक मंच पर प्रभावशाली बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष वेव्स के दौरान कहा था, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब सिनेमा का दायित्व है कि वह हमारी ताकत को, विश्व को रूबरू होने का अवसर दे। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे गांव, हमारे लोगों में जो हौसले की कहानियां छिपी है, उसे विश्व के सामने वह सामने लाए। आज हम एकता नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के छत्र छाया में एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली से बाहर करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस पहल में सरदार पटेल की वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना। आने वाले समय में यह पुरस्कार समारोह अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सभी पुरस्कार विजेताओं तथा दादा साहब फाल्के सम्मान से अलंकृत श्री अनंतनाग जी का मैं एक बार पुनः हार्दिक उन्हें बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
1: आपका हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार जी। सम्मान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आइए आज की इस गौरवपूर्ण संध्या के बहुप्रतीक्षित पल का पूरे उत्साह, सम्मान और उल्लास के साथ स्वागत करें, क्योंकि अब हम

0: 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय पुरस्कार वितरण की प्रथम कड़ी में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
1: The National Film Awards are divided into three comprehensive primary sections: Best Writing on Cinema, Non-Feature Films, and Feature Films. And finally, the icing on the cake is the Dadasaheb Phalke Award, India's best and the highest lifetime achievement award in cinema, recognizing a lifetime of extraordinary contribution to the growth and development of Indian film. So let's now begin with the Best Writing on Cinema.
2: श्रोताओं, पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए स्वर्ण कमल का सम्मान मिल रहा है कन्नड़ भाषा के लेखक डॉक्टर केचनूरु प्रदीप कुमार शेट्टी को। उनकी पुस्तक नानी रूवुदे निमा गागी, नानी रूवुडे नाना गागी, कन्नड़ सिनेमा दा थातवा मथु राजकीया।
1: While the winner of the best book on cinema author is being felicitated, before that, let me tell you what is the jury doing about the best writing on cinema. It honors critical scholarship research and film journalism through Swarna Kamal medals. Non-feature films recognizes short stories, socio-environmental documentaries, biographical compilations, and technical achievements in non-fiction cinema, and feature films celebrating artistic performance and technical brilliance across narrative feature films in all Indian languages, including high honors like Swarna and Rajat Kamal medals, are the final epitome of these awards.
2: श्रोताओं, शीर्षक का अर्थ है मैं तुम्हारे लिए हूँ, राज्य हमारे लिए है, कन्नड़ सिनेमा के दार्शनिक और राजनीतिक आयाम। श्रोताओं, यह पुस्तक कन्नड़ फिल्मों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं बल्कि समाज, रणनीति, राजनीति, विचारधारा और दर्शन को समझने के माध्यम के रूप में देखती है।
1: The best book on cinema publisher is also now getting felicitated. It is the Mirror Pustaka Publication House, represented by Ms. Soumya H. Publisher Mirror Pustaka receives the Swarna Kamal alongside the author for bringing this landmark film literature to life. Represented by Ms. Soumya H., the publishing house was praised for high editorial quality and dedication to film studies. Their work ensures that critical cinematic discourses reaches film scholars nationwide.
2: श्रोताओं, संजीव श्रीवास्तव को यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके हिंदी फिल्म समीक्षक के रूप में दिए गए विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक लेखन के लिए दिया गया है। उनका काम भारतीय सिनेमा के सौहार्द शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों और समकालीन फिल्म निर्माण को एक नई और गहरी समझ के साथ पाठकों के सामने रखने के लिए सराहा गया है।
1: Shri Sanjeev Srivastava takes home the Swarna Kamal for his insightful Hindi film criticism. His writings demonstrate a keen understanding of cinematic form, narrative nuances, and societal reflections in modern film. The next in the category is the non-feature films. The first mention is Chola Dora or Sui in Hindi. Director Shri Lakulesh Ghai receives a certificate and a special mention.
2: श्रोताओं, यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म पश्चिम हिमाचल क्षेत्र में रहने वाले गद्दी समुदाय के जीवन, उनकी समृद्ध संस्कृति और उनकी अनूठी वेशभूषा पर आधारित है। फिल्म का मुख्य केंद्र गद्दी समुदाय की पहचान माना जाने वाला पारंपरिक पहनावा चोला डोरा है। श्रोताओं,
1: डायरेक्टर लकुलेश गाय रिसीव्स अ स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट फॉर हिज सटल पोर्ट्रेयल ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल आर्ट्स। The short film weaves a poetic visual thread around craft heritage and human emotion. The jury commended its tender observational technique. Next in the category is a special mention, Chola Dora or Sui, director Shri Jaimin Modi receiving a certificate.
2: श्रोताओं, इसी श्रेणी में अगला पुरस्कार मिल रहा है मलयालम फिल्म भद्रकाली नाटकम को। फिल्म भद्रकाली नाटकम को विशेष उल्लेख का पुरस्कार प्रमाण पत्र के रूप में दिया जा रहा है। यह फिल्म केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोक कला और अनुष्ठानिक कहानी कहने की कला को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर जीवंत और संरक्षित करती है।
1: In progress are the non-feature films awards. Next in line is the

0: ஸ்கிரிப்ட் அபூர் ஹிந்தி அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஸ்ரீ ஃபராஸ் அலி ரிசீவ்ஸ் ரஜத் கமல்
1: श्रोताओं फिल्म के लेखक और निर्देशक फराज अली ने इस फिल्म के नाम में ओबुर यानी कि बादल शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही अनोखे और भावनात्मक रूपक यानी मेटाफर के रूप में किया है। आधुनिक दुनिया में हमारा डेटा, हमारी तस्वीरें, वीडियो, यादें इंटरनेट के क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रहती हैं। फिल्म के कश्मीरी ग्रामीण किरदारों के लिए इंटरनेट का यह क्लाउड पूरी तरह से नया और भ्रमित करने वाला है। वे मासूमियत में सोचते हैं कि उनका डेटा आसमान में तैरने वाले असली बादलों में चला गया है।
0: The next award in the category is Best Narration Voice Over, Little Planet, A Tale of Frogs in English. Narrator is Ms. Soundarya Jayachandran, who is receiving a Rajat Kamal. Soundarya Jayachandran takes the Rajat Kamal for her engaging, warm and articulate voice over narration. Her vocal performance transforms a natural history film on amphibians into an enchanting story for viewers of all ages. The commentary brings clarity, humor and wonder to ecological science.
1: श्रोताओं, यह 44 मिनट्स की एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है जिसे दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों में 9 साल की लंबी अवधि में फिल्माया गया है।
0: नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन परत 41 डिग्रीज च्या मागावर म्यूजिक डायरेक्टर श्री शिवपाल सिंह कांग रिसीव्स रजत कमल शिवपाल सिंह कांग विन्स फॉर हिज इवोकेटिव म्यूजिकल स्कोर दैट एलिवेट्स द फिल्म्स इमोशनल लैंडस्केप Blending acoustic textures with traditional melodies, his composition provides a subtle sonic heartbeat to the narrative. The score elevates key visuals, beats without overpowering the storytelling.
1: श्रोताओं, आपको और क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए चलिए आपको सीधे मंच से जोड़ते हैं।
2: अधिकारियों की भावनाओं को एक मार्मिक कथा का रूप दिया है। बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए रजत कमल तमिल फिल्म ब्लू के लिए श्री टी एस हरिहारा सूदन को प्रदान किया जा रहा है।
3: As you would have figured, for exceptional sound design and immersive sonic textures, waves, silence and ambient shifts that evoke a child's wish to see a whale, blending hope, emotion and the vastness of sea into a moving experience. Silver Lotus for the best cinematography for the film Life in Loom is presented to Sri Edmund Ransom.
4: When Britishers introduced the chemical dyes in India, every weaver's lived.
2: श्री एडमंड रैंसम को अपनी भावपूर्ण काव्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है जो भारत के प्राकृतिक दृश्यों को एक जीवंत कैनवस में बदल देते हैं जहां मनोहर छायांकन गति हथकरघा बुनाई की कालातीत कलात्मकता और भावना का उत्सव मनाती है और अब गैर फीचर फिल्म श्रेणी में गोल्डन लोटस अवार्ड करतल ध्वनि के साथ तैयार हो जाए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए हिंदी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के निर्देशक श्री आनंद एल राय प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल का सम्मान।
5: आसमान छूती प्रतिमा के तौर पर विश्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा।
3: The film is recognized for creative chronicle of the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming an engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, unity and national pride. Award for the best short film is being presented to Anushka Motion Pictures and Entertainments for the Marathi language film Hamsafar. On behalf of Anushka Motion Pictures and Entertainments, Shri Narendra Shanti Kumar Ferodia receives the Silver Lotus.
2: एक करुणामयी सिनेमाई कथा के माध्यम से फिल्म हम सफर दर्शाती है कि कैसे साधारण वस्तुएं गहरे व्यक्तिगत महत्व की बन जाती हैं और उनका खोना एक गहरा खालीपन उत्पन्न करता है।
3: Ladies and gentlemen, for the same film, director Shri Abhijit Arvind Dalvi is being awarded Silver Lotus. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal, how their loss opens a poignant void, sparking a heartfelt search for memory, identity, and emotional connection.
2: Best animated film ke liye JB Productions ko Mook Film

0: टच्ड एज वाटर के लिए रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। जेबी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म के एनिमेटर, निर्देशक और निर्माता श्री जोशी बेनेडिक्ट।
1: The film is recognized for its simple yet profound artistry. The film transforms grief into poetic animation, capturing love, loss and hope through graceful visuals and extraordinary cinematic simplicity. The next award for the best non-feature film promoting social and environmental values goes to Hindi Rajasthani English language film Piplantri, a tale of eco-feminism. On behalf of Johnson Suraj Film International, Ms. Garima Singh is receiving The Silver Lotus.
2: ये जो क्षेत्र है पिपलांत्री पंचायत, ये पूरी तरह मार्बल के खदानों के बीच में है।
3: बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग हो रही है, आपको दिख रहा है कि।
4: श्रोताओं, इसी कड़ी में सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है जॉनसन सूरज फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले बनी फिल्म पिपलांत्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म ने, जिसे प्राप्त कर रही है मिस गरिमा सिंह। यह फिल्म हिंदी, राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषाओं में है। इसे मिला है रजत कमल का सम्मान और साथ ही फिल्म के निर्देशक सूरज कुमार को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह 84 मिनट्स की एक बेहद प्रभावशाली फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित पिपलांत्री गांव की वास्तविक और प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। इस गांव के पूर्व सरपंच और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल ने एक अनूठी और ऐतिहासिक मुहिम शुरू की थी।
5: नेक्स्ट इन कैटेगरी इज बेस्ट डॉक्यूमेंट्री राम नाम इन हिंदी, प्रोड्यूसर बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत, रिप्रेजेंटेड बाय मिस लिनेट डिमेलो। She is going to receive Rajat Kamal. Producer Lynette DiMello accepts the Rajat Kamal for backing this striking documentary on the Ram Nami sect of Chhattisgarh. The film documents a community that tattoos sacred names across their bodies as an act of devotion and social defiance.
4: श्रोताओं, यह डॉक्यूमेंट्री राम नामी समुदाय पर केंद्रित है। यह समुदाय अपनी धार्मिक आस्था और पहचान को शरीर पर राम नाम का गोदन या टैटू बनवाकर व्यक्त करने के लिए जाना जाता है। फिल्म उनके विश्वास, परंपराओं और सामुदायिक जीवन को दस्तावेजित करती है।
5: एक्लेम डायरेक्टर भरत बाला गणपति रिसीव्स द रजत कमल फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री राम नामी इन हिंदी। नेक्स्ट इन लाइन इज बेस्ट आर्ट्स कल्चर फिल्म मैं निदा इन हिंदी, प्रोड्यूसर इज संप्रेषण मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेड बाय श्री अतुल गंगवार एंड ही इज गोइंग टू रिसीव रजत कमल।
4: श्रोताओं, मैं निदा प्रसिद्ध शायर और गीतकार निदा फाजली के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यह फिल्म सिर्फ निदा फाजली की जीवनी नहीं बल्कि उनके विचारों, संवेदनशीलता और कविता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश है। उनके शेर दिल को छू जाते हैं। क्या खूब लिखा है उन्होंने कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। और जब वे कहते हैं कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, तो ऐसा लगता है मानो पुरस्कार विजेताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सराह रहे हों और भीड़ का हिस्सा नहीं बने बल्कि अपना अलग रास्ता चुनकर अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं।
5: नेक्स्ट इन लाइन इन द नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी इज बेस्ट बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन फिल्म काकोरी इन हिंदी, producer KSR Brothers and Minty Mishra represented by Shri Jaswinder Singh, he is going to receive a Rajat Kamal.
4: श्रोताओं, इस फिल्म का विषय 1920 के दशक के ब्रिटिश भारत की ऐतिहासिक काकोरी रेल कार्यवाही है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी दौर से जुड़ी हुई है। फिल्म में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों से जुड़े घटनाक्रम को ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
5: The same film, Best Biographical Historical Reconstruction Film, Kakori receives the Best Director Award in the Non-Feature Film category and to receive the award comes Shri Kamlesh Kumar Mishra. He is going to receive the Rajat Kamal. Director Kamlesh Kumar Mishra wins for his meticulous historical research and sharp narrative pacing. He brings revolutionary figures to life with clarity, avoiding sensationalizing

0: while honoring sacrifice. The jury praised its educational value and dramatic tension.
1: श्रोताओं, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जा रहा है संथाली भाषा की फिल्म अंगेन को, और इसके लिए निर्देशक रवि राज मुर्मू को स्वर्ण कमल से अलंकृत किया जा रहा है। श्रोताओं, इस फिल्म में एक लोक कथा का उपयोग आधुनिक सामाजिक मुद्दों, विशेषकर महानगरों की ओर युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन यानी माइग्रेशन को दिखाने के लिए है, या दर्शाती है कि कैसे विकास की अंधी दौड़ युवाओं को उनकी मूल भाषा, संस्कृति और पहचान से दूर कर देती है।
0: Next in line is the filmmaker Sumira Roy, claiming the top non-feature award, the Swarna Kamal, as both producer and director. Film Bhangar explores urban waste, informal labor, and human resilience with unyielding cinematic power. The film was unanimously hailed by the jury as a masterpiece of modern non-fiction storytelling.
1: श्रोताओं, भंगार फिल्म का केंद्र कबाड़ और उसे इकट्ठा करके जीविका चलाने वाले लोगों की दुनिया है। फिल्म ऐसी वस्तुओं और लोगों पर ध्यान देती है जिन्हें समाज अक्सर महत्वहीन या बेकार मानकर नज़रअंदाज कर देता है। यह फिल्म कबाड़ बीनने और उसका पुनर्चक्रण करने वाले लोगों के जीवन, श्रम और रोजगार की वास्तविकता को दर्शाती है।
0: And now...

निर्माता, निर्देशक और टेक्नीशियंस और देश विदेश से पधारे अतिथिगण, मीडिया के साथियों और भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के सभी अधिकारियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकत्र हुए हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आप यहाँ पर पधारे और इस कार्यक्रम को गौरवमयी बनाया। जूरी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत की। ऑल ऑफ यू वर्क वेरी हार्ड, सॉ सो मेनी मूवीज, हैड वेरी डिटेल्ड डिस्कशंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट इन। एंड स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, गेटिंग अ नेशनल फिल्म अवार्ड इज सच अ ग्रेट ऑनर, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द विनर्स। हर फिल्म के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत होती है। आज का सम्मान न केवल जो विजेता यहाँ पर मंच पे आ रहे हैं, बल्कि उस पूरी टीम का है जो पर्दे के पीछे अपनी मेहनत से और अपनी डिसिप्लिन से फिल्म को फिल्म के देखने जैसा बनाते हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टेक्नीशियंस, सिनेमेटोग्राफर्स, ऑल ऑफ यू हु मेक द make it possible for the winners to come here and stand on the stage. Aaj Dada Sahib Phalke Puraskar 2024 ke vijeta Shri Anant Nag ji bhi hain. Aaj aapka vishesh abhinandan. We wish you so many congratulations. You have done great service to the film world. A very versatile talent. I have interacted with Mr. Nag. He has served the film world for more than 5 decades. Give him a huge round of applause. Standing ovation for Anant Nag ji. Great. Thank you. Thank you. आप सब जानते हैं कि जब G20 हुआ था, भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को एक अलग तरीके से पूरे देश में, कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज़ में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स cultural heritage of our country can be showcased to the world. That is the thought process that we have adopted in this year's NFA. The thought process is

0: सिटीज एंड स्मॉल टाउन्स ऑफ आर कंट्री, उस टैलेंट को एक नया मंच मिले, उस टैलेंट को एक बड़ा स्टेज मिले, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हेल्प करोगे? कोई वॉलंटियर्स यहाँ पे? कैन आई सी वन हैंड, टू हैंड्स, थ्री हैंड्स? ओ वाओ, ये तो बात बन गई, इतने लोग तैयार हैं साथ. प्रसून भाई, आपका काम आधे से ज़्यादा पूरा हो गया. थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट सपोर्ट. दूसरा है वेव्स 2027. वेव्स 2027 अगले साल अक्टूबर में करेंगे. अब तक बहुत अच्छे तरीके से वेव्स का फॉलोअप चल रहा है. वेव्स बाज़ार में बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और अब इस अगले एडिशन का 2027 में विल डू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर आइडियाज, शेयर योर थॉट्स, एंड मेक वेव्स एन इंस्टीट्यूशन विच विल बी देयर फॉर द क्रिएटिव वर्ल्ड फॉर मैनी मैनी ईयर्स. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड वंस अगेन मैं माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप यहाँ पधारे. माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ. माननीय गवर्नर साहब को धन्यवाद देता हूँ, आप सब पधारे. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.
1: नेक्स्ट इन लाइन, वी नाउ गो टू फीचर फिल्म अवार्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. सच एनिग्मेटिक एंड कैरिश्मेटिक इज द चार्म ऑफ इंडियन सिनेमा that I cannot help but tread into my co-commentator Neelam's territory and recite these few couplets in Hindi. Zindagi ye aina hai aur cinema us aina-e wajood par chamakti hui roshni. Har parda ek daastan kehta hai, har tasveer mein ek fasana hai. Kahin ashk hai, kahin muskurahat, kahin ek khwab suhana hai. Aur inhi daastanon ki darkhanon mein gungunata hamara Hindustan hai. Let's now go on to the feature films category. Special mention about two films, Maya Jahan in Thalem, Tamil. Sound mix engineer Shri Suren Ji would be now receiving a certificate. Sound engineer Suren Ji receives a special mention certificate for his delicate acoustic mixing in Maya Jahan. His sound mix captures the natural ambience of rural landscapes and intimate dialogue. The subtle sound design deepens the film's emotional intimacy. Second in the category of special mention is the film Captain Miller in Tamil. Actor Shri Dhanush is coming on to the stage to receive this award. Superstar Dhanush earns a special mention certificate for his intense, raw and fiery performance in Captain Miller.
2: श्रोताओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों के पुरस्कार का समय आ गया है, जिसमें दो फिल्मों को चुना गया है, तुलु फिल्म और गढ़वाली फिल्म. सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म का पुरस्कार मिला है इम्बू को, जिसके निर्माता पिक्चर स्टूडियोज की ओर से श्री प्रशांता कुमार बी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान, और फिल्म के निर्देशक शिवाध्वज शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान. श्रोताओं, यह फिल्म आज के डिजिटल युग में समाज के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है, जो मुख्य रूप से तीन संदेश देती है. केवल स्मार्टफोन खरीद लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित उपयोग की समझ होना बेहद ज़रूरी है. यह फिल्म साइबर स्कैमर्स के तौर तरीकों को उजागर करती है और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी देती है. कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि आधुनिक तकनीक जहां एक तरफ विकास का जरिया है, वहीं अगर उसे बिना सोचे समझे अपनाया जाए तो वह हमारी पारंपरिक जीवन शैली और मानसिक शांति को कैसे बर्बाद कर सकती है.
1: प्रोड्यूसर सुनील नायक टेक्स होम द रजत कमल फॉर ब्रिंगिंग गढ़वाली कल्चर टू द नेशनल स्टेज. ढोली फिल्म सेंटर्स अराउंड ट्रेडिशनल फोक म्यूजिशियंस एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इन द हिमालयन हिल्स. द फिल्म वॉज कमांडेड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्रिजर्वेशन वैल्यू.
2: श्रोताओं, ढोली की कहानी उत्तराखंड की पारंपरिक ढोल सागर यानी ढोल बजाने की प्राचीन कला और इसे जीवित रखने वाले ढोली समुदाय के संघर्ष पर आधारित है. फिल्म में दिखाया गया है कि उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य सामाजिक या धार्मिक ढोल के बिना पूरा नहीं होता.
1: बेस्ट गढ़वाली फिल्म डोली डायरेक्टर श्री दिनेश पुंडलिक भोसले रिसीव्स अ रजत कमल. ही विंस फॉर हिज सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ माउंटेन लाइफ एंड

0: artistic heritage. His direction captures breathtaking Himalayan landscapes alongside poignant human drama. The film gives a powerful voice to Uttarakhand's regional storytellers. And the next in line is best Telugu film, Kamiti Kurallovu. Producer Pink Elephant Pictures and Sri Radha Damodara Studios, represented by Miss Niharika Konidela.
1: श्रोताओं, कमेटी कुरोल्लू आंध्र प्रदेश के एक गांव की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म है जिसमें बचपन के दोस्तों के बीच के गाढ़े रिश्तों, आपसी मनमुटाव, ग्रामीण राजनीति और समय के साथ बदलते सामाजिक समीकरणों की कहानी कहती है।
0: The same film also receives the best director award. Shri Yadu Yuamsi wins for his dynamic ensemble staging and nostalgic narrative framing. He manages a large cast of newcomers while maintaining crisp dramatic control. His direction captures authentic rural warmth and emotional coming-of-age moments. Next in line is the best Odia film, Lahari. Producer Jilik Motion Pictures, represented by Ms. Jilik Bhattacharji, is on the stage to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, इसी पिक्चर के निर्देशक अमरत्य भट्टाचार्य को भी रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है। यह एक बेहद प्रशंसित और समीक्षकों द्वारा सराही गई ओडिया फीचर फिल्म है। इस फिल्म को कलात्मक सिनेमा के क्षेत्र में अपनी अनूठी कहानी और बेहतरीन प्रस्तुति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
0: Lahari delves into human relationships, artistic passions and coastal life realities. The film represents a bold aesthetic leap forward for contemporary Odia cinema. The film stands as a triumph of independent artistic cinema. Next in line is the best Marathi film, Mukkam Post Bombilwadi. Producer Vivek Films, represented by Shri Bharat Dilip Shitode. He is there to receive the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, यह फिल्म 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की एक मजेदार काल्पनिक कहानी है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर गलती से कोंकण के एक छोटे से गांव बॉम्बिलवाड़ी में आ जाता है। इसके बाद गांव के सीधे साधे लोग और एक स्थानीय नाटक मंडली मिलकर हिटलर का सामना अपने अनोखे और हास्यास्पद अंदाज में करते हैं, जिससे पूरी फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी पैदा होती है।
0: Next film in the language category is best Manipuri film, Sunita. Producer Skyline Pictures and Company, represented by Shri Yomanam Brojen Singh. Producer Yomanam Brojen Singh accepts the Rajat Kamal for backing this powerful social drama. Sunita highlights female resilience, social struggles and cultural endurance in Manipur. The film brings vital stories from the northeast to national prominence.
1: श्रोताओं, यह फिल्म श्रीमती मोइंगा मोइरांगदम सुनीता देवी के वास्तविक जीवन की सच्ची घटनाओं और उनके संघर्षों पर बनी एक बायोपिक है, जिसमें उनका अपनी दृष्टिहीनता से संघर्ष, शिक्षा के लिए दृढ़ता और पारिवारिक चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणादायक यात्रा दिखाई गई है।
0: डायरेक्टर श्री यमुनम अजीत सिंह ऑल्सो रिसीव्स द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द सेम फिल्म सुनीता. He wins for his realistic, compassionate and directorial approach. He draws deeply affecting performances from his cast while depicting real social challenges. Next in line is the best Malayalam film, Feminichi Fatima. Producer 1001 Stories and AFD Cinemas, represented by Shri Tamar Mon Karuanta Vallapil.
1: श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी फातिमा नाम की एक आम गृहिणी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने घर और समाज की पितृसत्तात्मक सोच और पाबंदियों से आजाद होने की कोशिश करती है। ज्यूरी ने घरेलू पितृसत्ता पर इसके मजाकिया और सटीक कटाक्ष की सराहना की है।
2: Flowing Manjovi Films LLP, RS Creations and Kathputli Arts and Films की तरफ से श्री शरद मित्तल को रजत कमल का सम्मान।
3: Hi Jack, how are you? Gracie.
4: The story beautifully blends grief, love and cultural identity with remarkable sensitivity. The film offers deeply rooted narrative marking significant milestone for Konkani cinema. And the director of the film, Sri Radhesham Pipalwa, is receiving the Silver Lotus.
2: फिल्म मॉग असुम को एक ऐसी भावनात्मक कहानी के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, जो दुख, प्रेम और सांस्कृतिक पहचान की बेहद संवेदनशीलता से सामने लाती है। अपनी जड़ों से जुड़ी ये फिल्म कोंकणी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।
4: Also, the director of the film, Sri Agnello Braganza, being awarded with Silver Lotus.

0: मॉग असुम कोंकणी सिनेमा में अपनी अनूठी कहानी और भावपूर्ण अंदाज के कारण एक मील का पत्थर साबित हुई है और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म का पुरस्कार फिल्म मिथ्या को प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक श्री सुमंत भट्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए
1: The film is recognized for its profound portrayal of childhood trauma, angst, grief, and fragile illusions of stability in fractured society. The award for the best Hindi film is awarded to Shrikant, produced by Super Cassettes Industries Private Limited, Shock and Cheese Films Production. Shri Bhushan Kumar receives the Silver Lotus.
2: What is your name, young man?
3: Sir, my name is Shrikant Bola.
0: सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत दृष्टिबाधित उद्योगपति की जीवनी पर आधारित एक प्रेरणादायक हिंदी फिल्म है जो इंसानी जज्बे की जीत के गहन मानवीय चित्रण के लिए प्राप्त कर रही है राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण करते हुए फिल्म के निर्देशक श्री तुषार हीरानंदानी।
1: श्रीकांत ट्रांसेंड्स द कन्वेंशंस ऑफ बायोग्राफिकल ड्रामा टू डिलीवर अ स्टोरी ऑफ होप विद ऑनेस्टी एंड ग्रेस। The next award is for Best Gujarati Film, conferred to Maran, produced by Cineman Productions Limited, and Sri Amit Desai to receive the Silver Lotus.
4: Beauty and a Beast, Bhega Thai.
0: Film Maran, अन्याय का सामना करती महिलाओं के साहस, दृढ़ता और एकजुटता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है और समकालीन गुजराती सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी फिल्म के निर्देशक श्री अभिषेक जैन को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है।
1: The film is recognized for its bold exploration of gender violence and patriarchal oppression through a powerful narrative. Thank you, Honorable President and distinguished guests. May I now request Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel, to address the gathering.

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 कार्यक्रम में हम सभी के साथ मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार, फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री जयराज, नॉन फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष श्री असीम सिन्हा, बेस्ट फिल्म लेखन ज्यूरी के अध्यक्ष श्री ए चंद्रशेखर, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की धरती गुजरात में पधारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया तथा आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। गुजरात गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। मित्रों, अगर सरदार पटेल न होते तो शायद जिस भारत को आज हम देखते हैं वो भी नहीं होता। सरदार साहब ने दृढ़ संकल्प से तत्कालीन रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके एक और अखंड भारत का निर्माण किया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एक और अखंड भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार साहब के महत्वपूर्ण योग

योगदान को इस एकता नगर में लोह पुरुष सरदार साहब की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण से यथा योग्य गौरव दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का एकता नगर में पहली बार आदरणीय राष्ट्रपति महोदया की प्रेरक उपस्थिति में आयोजन हमारे लिए गर्व का अवसर है। आज एकता नगर में देश के फिल्म जगत का यह राष्ट्रीय सम्मान एक और संदेशा भी देता है। हमारी एकता जितनी विराट है उतनी ही हमारे सर्जकों फिल्म मेकर्स की सृजन शक्ति भी विशाल है। सिनेमा केवल मनोरंजन की ही नहीं परंतु समाज का प्रतिबिंब है, संस्कृति और संवेदनाओं को व्यक्त करने का सक्षम मंच है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में भारत ने विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाई है। इस पहचान को और गति देने में भारतीय सिनेमा उद्योग सॉफ्ट पावर की बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक फिल्म भाषा की सरहद पार कर सकती है, कलाकार करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं, एक कहानी विश्व को भारत के साथ जोड़ सकती है। ऐसी ही विविध भाषाओं, संस्कृतियों और भारत के कोने कोने में मौजूद प्रतिभाओं में से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों सम्मानित करने का आज का अवसर है। श्री ममूटी, श्री कार्तिक आर्यन, श्रीमती यामी गौतम हमारे बाल कलाकारों और इन प्रेरणादायी कहानियों के पर्दे पर साकार करने वाले सभी कलाकारों, निर्देशकों, लेखक और टेक्नीशियनों को अभिनंदन एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह समारोह गुजरात के लिए दुगुनी खुशी का अवसर है क्योंकि गुजराती फिल्म मारण को भी बेस्ट गुजराती फिल्म का पुरस्कार मिल रहा है। सिनेमा जगत के इतने दिग्गज रचनाकारों का गुजरात की धरती पर संगम केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि नई रचनात्मक यात्रा की शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उद्योग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी तथा सेमीकॉन जैसे इमर्जिंग सेक्टर तथा टूरिज्म में अपनी विशेष पहचान बनाई है। अब इस डेवलपमेंट जर्नी में क्रिएटिव इकोनॉमी को भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाने की मंशा है। गुजरात के पास प्रकृति और विरासत का अद्भुत खजाना है। कच्छ का सुंदर सफ़ेद रण है, नर्मदा, तापी और साबरमती जैसी पवित्र नदियाँ हैं, गिरनार और सापुतारा जैसे रमणीय पर्वत हैं, एशियाटिक लायन और गिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एट्रैक्शन है, धौलावीरा और लोथल जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो देश के सबसे लंबी 2300 किलोमीटर से अधिक की समुद्री तटरेखा भी गुजरात के पास हैं। गुजरात अपनी पौराणिक विरासत, सदियों पुरानी परंपराएं, अनूठी संस्कृति, विश्व प्रसिद्ध गरबा, लोक मेले और उत्सवों से समृद्ध हैं। गुजरात के अद्भुत लोकेशन के कारण ही ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर, सत्य प्रेम की कथा, कुसुम्बो, काइपोचे, फोर्स 3 और लालो जैसी फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के सभी निर्माताओं और निर्देशकों को हमारा निमंत्रण है, गुजरात के इन विविधपूर्ण पर्यटन लोकेशन का अनुभव कीजिए और अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए गुजरात को डेस्टिनेशन बनाइए। गुजरात फिल्म निर्माताओं के लिए रिक्वायर्ड परमिशन, फिल्म प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रोड्यूसर फ्रेंडली अप्रोच जैसे इनिशिएटिव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात को फिल्म प्रोडक्शन तथा ओटीटी के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस बनाने के उद्देश्य गुजरात सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है। हमारा प्रयास है कि गुजरात में फिल्मों के शूटिंग लोकेशन से आगे बढ़कर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग क्षेत्र का पूरा इकोसिस्टम बने। हम एक ऐसी संगीन संरचना बनाना चाहते हैं कि गुजरात का युवा अपने शहर या गांव में रहकर वर्ल्ड क्लास फिल्म, एनिमेशन, VFX

0: या डिजिटल कनेक्ट पर काम कर सके। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के आयोजन से गुजरात की यश कीर्ति में एक नया मोरपंख जुड़ा है। हमें इस अवसर का सौभाग्य देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने में गुजरात को अग्रसर रखने में आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके भविष्य के प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
1: श्रोताओं, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के संबोधन के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है और प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसकी श्रेणी में अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का।
2: द फिल्म इज रायन, प्रोड्यूसर सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, रिप्रेजेंटेड बाय मिसेस कावेरी कलानिधि, शी वुड बी देयर टू रिसीव द रजत कमल।
1: श्रोताओं, रायन निर्माता सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की ओर से श्रीमती कावेरी कलानिधि को रजत कमल का पुरस्कार मिल रहा है और निर्देशक धनुष को भी रजत कमल का राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है।
2: The production combines high technical scale with visceral family drama. It stands as a commercial and critical highlight of modern Tamil cinema. Feature film best in the category of the language Tamil is Rayan, and the director is Shri Dhanush. Dhanush claims his second award of the ceremony, winning Best Director for guiding his 50th landmark film. His directorial vision crafts intense action, deep brotherhood ties, and relentless moral conflict. His staging proves his commanding authority both behind and in front of the camera. The next category is Best Bengali Film. Chalchitra Ikon, producer Anjan Dutt Production, represented by Shri Neel Dutt.
1: Shrotaon, यह फिल्म निर्देशक अंजन दत्त की खुद की यादों और उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है। यह फिल्म उनके द्वारा उनके गुरु भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता मृणाल सेन के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें समर्पित एक भावुक श्रद्धांजलि है।
2: प्रोड्यूसर नील दत्त एक्सेप्टेड द अवार्ड फॉर दिस डीपली पर्सनल होमेज टू लेजेंडरी ऑशियर मृणाल सेन। द फिल्म एक्सप्लोर्स द मेंटर डिसिपल रिलेशनशिप इन 1980s कोलकाता फिल्म सर्कल्स। इट इज ऑल्सो रिसीविंग द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर द सेम फिल्म Chalchitra Ikon, and here comes Shri Anjan Dutt. Veteran artist Anjan Dutt wins for directing a deeply reflective semi-autobiographical tribute to his mentor.
1: श्रोताओं, अब श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म में जुई फूल को दिया जा रहा है सम्मान। इसके निर्माता श्री जादुमोनी दत्ता, मिस रीता दत्ता और मिस नंदिनी शर्मा दत्ता। मिस रीता दत्ता रजत कमल का पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। इसी फिल्म के निर्देशक श्री जादुमोनी दत्ता को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। श्रोताओं, यह फिल्म एक असमिया विधवा और एक नागा महिला के बीच के मानवीय रिश्तों और मातृत्व की एक बेहद संवेदनशील कहानी को दर्शाती है।
2: Best Assamese film Joyful receives awards for producer and also for the director. Shri Jadumani Datta is also there to receive the award as a director. It is one for guiding Joyful with deep compassion and documentary-like realism. The camera work focuses on ordinary lives caught in territorial tensions, finding hope in shared humanity. The direction delivers a quiet yet unforgettable emotional impact. Next in line is the best action direction film Maharaja in Tamil language, wins the best action direction film award. Stunt choreographer Shri Anil Arasu will be there to receive the Rajat Kamal.
1: Shrotaon, sarvashreshth action nirdeshan mein Tamil picture Maharaja ke liye sarvashreshth action nirdeshan ka puraskar mil raha hai Anil Arasu ko. Inhe manch par puraskar grahan kiye करते हुए हम देख सकते हैं।

0: The next in line is the award for the best choreography and in Hindi is 3-2 film choreographer Shri Vijay Ganguly comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं गीत आज की रात के लिए विजय गांगुली को मिल रहा है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड. सिनेमा में कभी एक धुन कहानी कहती है, कभी एक शब्द और कभी एक कदम.
0: The sequence became a national pop culture moment demonstrating choreography's power in mainstream cinema. Here's Vijay Ganguly receiving the Rajat Kamal. Next in line is the award for best lyrics in Hindi for the film Maidan. Lyricist Shri Manoj Muntashir receives the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं मैदान के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए मनोज मुंतशिर को दिया जा रहा है पुरस्कार. फिल्म में यह गाना कठिन परिस्थितियों में हौसला और लचीलापन बनाए रखने की भावना को दर्शाता है.
0: The poetic lyrics that capture national pride and sporting grit, Manoj Muntashir comes on the stage and receives the award for his lyrics in the film Maidan. Next in the category is best music direction background score. Amaran film Tamil, music director Shri G.V. Prakash Kumar, he is there to receive the award on stage.
1: फिल्म अमरन, तमिल फिल्म अमरन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जी वी प्रकाश कुमार के लिए को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान.
0: द पावरफुली एंड इमोशनली चार्ज्ड बैकग्राउंड स्कोर रियली टचेस द हार्ट. फिल्म अमरन म्यूजिक डायरेक्टर श्री जी वी प्रकाश कुमार रिसीविंग द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड. नेक्स्ट इन लाइन इज द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन सॉन्ग्स फॉर द फिल्म Article 370, music director Shri Shashwat Sachdev comes on stage to receive this award.
1: श्रोताओं संगीत निर्देशन और गीत में अब मिल रहा है आर्टिकल 370 के लिए गीतों के संगीत निर्देशन के लिए शाश्वत सचदेव को रजत कमल का सम्मान.
0: The compositions of this film combine modern orchestral arrangements with patriotic vocal lines. The songs elevate the film's narrative momentum without distracting from the tension. Next in line is the category best makeup for Kamiti Kurallu Telugu film. Makeup artist Shri Pasupuleti Ravi Kumar comes on stage to receive the award.
1: श्रोताओं कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें कई नाम शायद फिल्म देखते समय दिखाई नहीं देते, लेकिन पर्दे पर जो कुछ दिखाई देता है उसकी नींव इन्हीं लोगों के काम से तैयार होती है. और सर्वश्रेष्ठ मेकअप कमेटी कुरुलु के लिए पी रवि कुमार को मिलता है रजत कमल का सम्मान.
0: द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर द फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2. तेलुगु फिल्म कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री शीतल इकबाल चंद शर्मा रिसीव्स द अवार्ड. शीतल इकबाल चंद शर्मा विंस फॉर क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर अटायर रूटेड इन रस्टिक टेक्सचर्स. His designs give distinct visual identity to rival factions and regional cultural attire. The costumes played a massive role in shaping the film's iconic visual style. The next award is Best Costume Design again. Pushpa the Rule Part 2, Telugu costume designer Miss Dipali Noor also receives the co-award.
1: Shrotao, Sarvashreshth Costume Design ke liye do designers ko सम्मानित किया गया है. पुष्पा द रूल पार्ट 2 में दीपाली नूर और पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लिए ही शीतल शर्मा को रजत कमल से सम्मानित किया गया है.
0: नेक्स्ट इन लाइन इज बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन कल्कि 2898 एडी इन तेलुगु. प्रोडक्शन डिजाइनर श्री नितिन जिहानी चौधरी रिसीव्स द अवार्ड फॉर दिस फिल्म कल्कि 2898 एडी बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन.
1: श्रोताओं सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन के लिए जो तमिल में बनी है मूवी कल्कि 2898 एडी तेलुगु मूवी, नितिन जिहानी चौधरी को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान.
0: और आइए अब आपको स्टेज पे ले चलते हैं, वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है.
2: The award recognizes masterful crafting of pace, narrative flow, emotional depth and complex action sequences.
3: और अब बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड हिंदी फिल्म भूल भुलैया पार्ट 3 के लिए श्री मानस चौधरी को प्रदान किया जा रहा है. आप पा रहे हैं रजत कमल.

0: The luminous black and white cinematography transforms light and shadow into powerful storytelling tools.
1: सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए श्री अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के लिए रजत कमल का सम्मान।

0: गीत नवसाची गोराई माजी में उनकी शक्तिशाली प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत में निपुणता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण, पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी।
1: भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मान्य श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मान्य डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री चंचल कुमार जी, फीचर फिल्मों की जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री जयराम जी, नॉन फीचर फिल्मों के जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री असीम सिन्हा जी, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन की जूरी के अध्यक्ष माननीय श्री ए के चंद्रशेखर जी और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले माननीय श्री अनंत नाग जी, फिल्म जगत के महानुभाव तथा देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्मानित पुरस्कार विजेताओं, भाइयों और बहनों, आज जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा

फिल्म पुरस्कार लगभग दिल्ली में होते थे। पहली बार मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली से बाहर प्रथम बार इस फिल्म पुरस्कार को स्थानांतरित किया, तो वो भी गुजरात में किया और गुजरात में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वास्तव में 562 रियासतों में बटा देश आज़ाद हो भी गया था। यदि वो इन खंडों में बटा होता तो आज भारत कैसा होता अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे लौह पुरुष जिनके व्यक्तित्व को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो मान दिया, वो सम्मान दिया, जिसके वो सही अर्थों में अधिकारी थे, आज यह बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का स्थल पूरे देश के लोगों के लिए भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का केंद्र बन चुका है। आप फिल्म जगत के लोग हैं, आप अपनी विधा के द्वारा जिस सरलता से, जिस सहजता से समाज की हर वर्ग की चुनौतियों को लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज फिल्म जगत ने भारत की सभी भाषाओं को समृद्ध करने का काम किया है, भारत की राष्ट्रभाषा से देश को जोड़ने का काम किया है, लोगों को एक दूसरे से पहचान दिलाने का काम किया है। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटा सा निवेदन भी मैं ज़रूर करूँगा, भाई और बहनों, हम मनोरंजन की दुनिया में आज बहुत तनाव में दुनिया गुजर रही है, बहुत डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी के साथ गुजरात प्रांत एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें नेतृत्व है। आज हमारी युवा पीढ़ी, हम सब लोग हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको कोई सुनता नहीं था, आज से 40 वर्ष पहले इस देश में कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज़ को कोई नहीं जानता था, हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता था, पेनक्रियाज फेल होती कोई जानता नहीं था। हम जितने बैठे किसी के पिताजी ने कभी घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज हम सब लाइन में बैठे हैं। 20-20 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे कैंसर से जूझ रहे हैं, पेनक्रियाज फेल हो रही, कारण के बिना कार्य नहीं होता। और इसका बहुत बड़ा कारण आज हमारा जो पर्यावरण है वो तेजी से बिगड़ रहा है। आपने और हमने फिल्मों के माध्यम से नेचुरल फार्मिंग की ओर लोगों को प्रेरित करने का काम करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी तरीके आ सकें वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसा खान पान जिससे लोग स्वस्थ और निरोग होकर के जी सकें। आज भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं। यदि भारत अपनी पुरातन सांस्कृतिक परंपरा जो सारे देश में एक जैसी है, आपके माध्यम से भारत की संस्कृति के वो मूल सूत्र जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह पर जुड़े हुए थे, जो शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय पर जुड़े थे, हमारी फिल्मों के माध्यम से मार धाड़ का रूप थोड़ा सा हल्का करके

0: लोगों में एकता, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा और हम एक दूसरे के काम आ सकें और राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ एक एक मेरे देश का व्यक्ति आगे बढ़े। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आज जो युवा पीढ़ी के लोग मंच पर आए, भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने जिनको आज बड़े गर्व के साथ सम्मानित किया है, इस दिशा में यदि हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित कर पाए, निर्व्यसनी कर पाए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से सोचने का पैदा कर पाए, ये फिल्म जगत के माध्यम से, क्योंकि वो लोगों के दिलों में उतरती है, सहज भाव से आप कठिन विषय को सरल बनाकर लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मैं पुनः आप सब गुजरात की इस पावन धरा पर आए आपका अभिनंदन करते हुए आपके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं और सबको पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के संबोधन को, और इसके बाद कार्यक्रम फिर से पुरस्कार वितरण की ओर बढ़ चला है। माननीय राष्ट्रपति जी अन्य डिग्निटरीज के साथ पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर पधार गई हैं। क्रम चल रहा है संगीत और गायन के पुरस्कार का। अब समारोह में संगीत का रंग घुल गया है। सिनेमा की कहानी आंखों से शुरू होती है लेकिन अक्सर दिल तक पहुंचती है संगीत के रास्ते। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है वैकोम विजय लक्ष्मी को फिल्म एआरएम के लिए, जो मलयालम फिल्म है और गीत है अंगुवाना कोनिलु।
2: वैकोम विजय लक्ष्मी अर्न्स रजत कमल फॉर कमांडिंग पिच परफेक्ट वोकल डिलीवरी ऑफ अंगुवाना कोनिलु। Her unique vocal timbre adds mythic scale and emotional depth to a period fantasy adventure. Her performance stands out as a high point in film music. Next in line is Best Child Artist, Onko Kikothing in Bengali. Child Artist Miss Geeta Shri Chakravarti receives the award.
1: Shrotao, category hai Sarvashresht Bal Kalakar ki, aur aapko bata de कि ये नई पीढ़ी मंच पर खूबसूरत दिखाई दे रही है और इसमें दो पिक्चरों के लिए बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। टोटल 5 बच्चों को इसमें पुरस्कार मिल रहा है, जिसमें ओंको की कोथोन यानी क्या गणित कठिन है के लिए, जो बंगाली फिल्म है, उसके लिए 3 बच्चों को पुरस्कार मिल रहा है। सबसे पहले आ रही हैं गीताश्री चक्रवर्ती, जो अपना पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं।
2: यंग गीताश्री चक्रवर्ती रिसीव्स रजत कमल फॉर अ हार्टवार्मिंग कंप्लीटली नेचुरल परफॉर्मेंस। शी पोर्ट्रेज अ स्कूल चाइल्ड डीलिंग विद क्लासरूम प्रेशर्स एंड चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी विद इनोसेंस। हर स्क्रीन प्रेजेंस ब्रिंग्स जेन्युइन चार्म टू द बंगाली फीचर। नेक्स्ट इन लाइन इज द चाइल्ड आर्टिस्ट तपोमोय देव। तपोमोय देव शेयर्स टॉप चाइल्ड आर्टिस्ट ऑनर्स फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड विटी परफॉर्मेंस। हिज कॉमिक टाइमिंग एंड अनइनहिबिटेड एक्टिंग bring light-hearted energy to child education themes. The jury praised his effortless comfort in front of the camera. And third in line, best child artist, Onko Kikothin in Bengali is Shri Riddhiman Banerjee.
1: Shrotaon, 35 Chinna Katha Kadu, Telugu film ke liye, Arun Dev Pothula ko bhi mil raha hai Rajat Kamal ka samman. Aur movie Mithya, yani Kannad movie Mithya ke liye, अतीश एस शेट्टी को भी मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। आज इन छोटे कलाकारों की आंखों में जो चमक है, शायद वही कल भारतीय सिनेमा की पहली किरण बनेगी।
2: श्री अरुण देव पोथुला विंस रजत कमल फॉर पोर्ट्रेइंग अ यंग बॉय स्ट्रगलिंग विद स्कूल मैथमेटिक्स। हिज परफॉर्मेंस कैप्चर्स फ्रस्ट्रेशन, इनोसेंस एंड डिटरमिनेशन विद एब्सोल्यूट सिंसियरिटी। ही एंकर्स द फिल्म्स नैरेटिव हार्ट alongside veteran actors. And next in line is the child artist Shri Atish S. Shetty. He is receiving the Best Child Artist Award for the Kannada film Mithya. Atish S. Shetty earns national acclaim for his hauntingly quiet portrayal of an 11-year-old orphan. Handling grief, confusion and subtle acceptance without dramatic melodrama, his eyes carry the film's emotional weight.

0: His performance is a masterclass in child acting. Next in line is the best actress in a supporting role. Kannada film Mithya, supporting actress Miss Roopa Shri Varakadi receives the Rajat Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दो अभिनेत्रियों को मिला है. कन्नड़ा फिल्म मिथ्या के लिए रूपश्री वरकाड़ी को मिलता है रजत कमल का सम्मान और दूसरी फिल्म तमिल महाराजा के लिए सचना नामिदास को भी मिलता है रजत कमल का सम्मान. श्रोताओं, दो अलग भाषाएं, दो अलग फिल्में, लेकिन सम्मान का मंच एक, यही भारतीय सिनेमा की असली तस्वीर है.
0: Both the supporting actresses, Ms. Roopa Shri Varakadi and Ms. Sanchana Namidas, have brought glitters to regional cinema for their supporting role in the films Mithya and Maharaja in Kannada and Tamil language respectively. Next, best actor in supporting role would be for the film Bhakshak in Hindi, supporting actor, one and only, Shri Sanjay Mishra.
1: श्रोताओं, अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, जो मिल रहा है संजय मिश्रा को. अब मंच पर एक ऐसा अभिनेता जिनके चेहरे को देखते ही दर्शक अनेक यादगार चरित्रों को याद कर लेते हैं. भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता संजय मिश्रा. संजय मिश्रा का सिनेमा सफर हमें बताता है कि अभिनेता की महानता केवल मुख्य भूमिका में नहीं होती, कभी कभी कुछ मिनट का चरित्र भी पूरी फिल्म की स्मृति बन जाता है. और आज उस अभिनय को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, रजत कमल का सम्मान.
0: Sanjay Mishra's performance as a weary yet courageous ground reporter brings quiet dignity, humor and moral resolve to an investigative journalism drama. His character serves as the conscience of hard-hitting story. And the next in line is the best actress in a leading role award goes to Yami Gautam Dar for the film Article 370 in Hindi. Yami Dar wins the prestigious Best Actress Award for her intense portrayal of intelligence officer Zuni Haksar. She leads a political thriller with sharp authority, physical discipline and emotional restraint.
1: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी यामी गौतम एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अलग अलग तरह के किरदारों से अपनी पहचान बनाई. विकी डोनर से शुरुआत, फिर काबिल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, ओएमजी 2 अ थर्सडे और अब आर्टिकल 370.
0: नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल. नाउ द डायस इज शेयर्ड बाय टू ग्रेट चैंपियंस ऑफ एक्टिंग. फर्स्ट कम्स फॉर द मूवी चंदू चैंपियन इन हिंदी एक्टर श्री कार्तिक आर्यन. ही अर्न्स अ हिस्टोरिक शेयर्ड अवार्ड विद द वन एंड ओनली श्री मामूटी फॉर द फिल्म ब्रह्मयुगम इन मलयालम.
1: श्रोताओं, मंच पर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, जिन्होंने प्यार का पंचनामा से लोकप्रियता पाई, सोनू के टीटू की स्वीटी से मजबूत पहचान, भूल भुलैया 2 से बड़ी व्यावसायिक सफलता और अब चंदू चैंपियन में एक बिल्कुल अलग चुनौतीपूर्ण भूमिका. इसके बाद मिल रहा है ममूटी को बेस्ट एक्टर का सम्मान.
0: Screen legend Mammootty shares the best actor honor for his chilling performance as Koduman Potti. Operating in a monochrome folk horror setting, his vocal modulation, posture and sinister charm deliver an acting masterclass. It stands as another crown jewel in his multi-decade career. Next in line is the best direction award for the Tamil film Amaran. Director Shri Rajkumar Periaswamy receives the Swarna Kamal.
1: श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को मिल रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान. अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन राजकुमार पेरियासामी. यह फिल्म भारतीय सेना के जांबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन के जीवन और उनकी वीरता पर आधारित है.
0: राजकुमार पेरियासामी इन द फिल्म अमरन, हिज डायरेक्टोरियल विजन ऑनर्स रियल लाइफ हीरोज विद एस्थेटिक ब्रिलियंस एंड डिग्निटी. He balances authentic tactical military action with tender personal storytelling. Next is the category of best children's film. 35 Chinna Kathakodu, Telugu film, producer S Originals and Walter Productions, represented by Shri Shrujan Yarabolu.
1: Ji haan shrotao, bachchon ki duniya, unki jigyasa, unke sawal.

0: हाल और उनकी नजर से समाज को देखने का प्रयास। सिनेमा की यही खूबसूरती है, वह हर उम्र के बच्चों से, लोगों से संवाद कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को मिल रहा है रजत कमल नहीं स्वर्ण कमल का सम्मान।
1: इस फिल्म को दोनों कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है। द फिल्म इज रिसीविंग अवार्ड्स इन बोथ द कैटेगरीज फॉर प्रोड्यूसर एज ऑल्सो द डायरेक्टर। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू, प्रोड्यूसर एस ओरिजिनल्स एंड वॉल्टर प्रोडक्शन, फॉलोड बाई डायरेक्टर श्री नंद किशोर इमानी। Director Nandakishore Imani shares the Swarna Kamal for directing an engaging narrative about overcoming learning fears. His light-hearted direction treats children with dignity while delivering a vital message on empathy in education. The next is the category of Best Feature Film promoting social values, and the film is Captain Miller in Tamil. Producer Satyajyoti Films, represented by Shri Thyagarajan T.G., comes on to receive the Rajat Kamal.
0: जी हाँ श्रोताओं, राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म अब पुरस्कार मिल रहा है तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को। तमिल सिनेमा की इस फिल्म के निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, इन्हें मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। मंच पर सम्मान ग्रहण किया जा रहा है।
1: Producer Thyagarajan accepts Rajat Kamal for his scale, epic tackling operation, caste barriers and freedom struggle story. Next in category is the best feature film promoting social values. Captain Miller in the film in Tamil receives the best director award. Shri Arun Matheshwaran comes on stage. He wins for crafting an uncompromising historical revolution drama. His staging blends cinematic scale with strong socio-political commentary against systemic oppression. His direction delivers visceral excitement alongside meaningful themes.
0: श्रोताओं, अब बारी है लोकप्रिय एवं संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, जो गया है तेलुगु फिल्म कल की 2898 AD को। बारी है उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के भविष्य और हमारी पौराणिक कल्पनाओं को एक विशाल सिनेमाई संसार से जोड़ने का प्रयास किया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है कल की 2898 AD, जिनके निर्देशक हैं नाग अश्विन सिंह रेड्डी, इन्हें जाता है स्वर्ण कमल का पुरस्कार।
1: The wholesome entertainer Kalki 2898 AD receives the award for best producer and director both, received respectively by Shri Chalasani Ashwini Dutt and Shri Nag Ashwin Singireddy. Next in line is the best debut film of a director, Swatantra Veer Savarkar in Hindi, directed by Shri Randeep Hooda, wins the honors.
0: Shrotao, Sarvashesh Navodit Nirdeshak का अवार्ड मिला है रणदीप हुड्डा को, एक ऐसा नाम जिसे दर्शक अभिनेता के रूप में वर्षों से जानते हैं, लेकिन आज उनकी पहचान के साथ एक नया अध्याय जुड़ रहा है। स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा ने हाईवे, सरबजीत, रंग रसिया और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई, और आज कैमरे के सामने खड़ा होने वाला यही कलाकार कैमरे के पीछे की अपनी दृष्टि के लिए सम्मानित हो रहा है।
1: After the best debut director comes the turn of the best feature film, and that is the Hindi feature film Article 370. Producer Geo Studios and B62 Studios, represented by Shri Aditya Dhar, is going to receive the award. Producer Aditya Dhar receives Indian cinema's top prize, the Swarna Kamal, for best feature film. The production delivers a high-stakes political thriller examining complex national intelligence operations. It was lauded for its high technical finish, research and cinematic tension. And next in line is the best feature film Article 370 Hindi director Shri Aditya Suhas Jambale.
0: जी हाँ श्रोताओं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 घोषणा हो चुकी है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल जाता है आर्टिकल 370 को। फिल्म के निर्माता हैं जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज, और इनकी ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री आदित्य धर और निर्देशक हैं आदित्य सुहास जम्भाले।
1: Director Aditya Suhas Jambale just received the Swarna Kamal for directing the best feature.

0: Kashmiri shawl and a cash purse of 15 lakh rupees. And this year's Dada Saheb Phalke awardee is Shri Anant Nag.
1: जी हाँ श्रोताओं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार मिल रहा है अनंतनाग को। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उनके 5 दशकों से अधिक के योगदान के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने 1970 के दशक से लगातार अभिनय किया और 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और मराठी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उनका योगदान कई भारतीय भाषाओं तक फैला। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में अंकुर और लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक मालगुडी डेज शामिल हैं। उन्हें 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स और 5 कर्नाटका स्टेट बेस्ट एक्टर अवार्ड सहित सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें 2025 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है।
0: For over 50 uninterrupted years, Anant Nag has stood as the definitive master of naturalistic acting, an artist who proved that true cinematic power does not require theatrical thunder or exaggerated artifice, but a luminous, quiet truth. Discovered on the Mumbai theatre stage and brought to celluloid by the maestro Shyam Benegal, Anant Nag became the undisputed face of the Indian parallel cinema movement. In landmark Hindi classics such as Ankur, Nishant, Manthan, Bhumika, Kandura and Kaliyug, he brought an unprecedented psychologically forensic nuance to complex roles portraying feudal arrogance, bureaucratic moral dilemmas and human vulnerability. Simultaneously, he became the soul of Kannada cinema. From profound philosophical literary adaptations like GVIS classical musical masterpiece, Ham Sagiti, P. Lankesh Pallavi, and the cinematic adaptations of Jnanpith laureate Dr. Shivaram Karand, to redefining middle-class comedy with unforgettable warmth in films like Ganeshna Madhuve, Gauri Ganesha, and Belandigala Bale. His versatility has never been matched. In modern contemporary cinema, his dignified patriarchal presence in KGF Chapter 1 and Rishabh Shetty's Sarkari Hi Prashale continues to captivate young generations. And here's actor Anant Nag, who has come along with his wife Gayatri, who is now walking to the screen to receive the award from Honorable President Madam. The award honors a true titan of Indian cinema. The entire auditorium at Ekta Nagar stands in ovation as legendary actor Shri Anant Nag is walking towards the stage receiving the Dada Saheb Phalke Award. There is a brief film for 5 minutes shown about Anant Nag, which is being displayed on the screen right now as his various characters are being portrayed on the screen. We go through the history, reminiscing those times of Malgudi days and the film Kaliyug, where he portrayed an aristocratic businessman, or a loving male character with Simi Garewal. He has received Karnataka State Best Actor Award, Filmfare Awards, and Karnataka Rajyotsava Award, Karnataka Sahitya Academy Award, Karnataka State Lifetime Achievement Award, and now is the time for him to achieve the Dada Saheb Phalke Award. He walks to the screen and receives the award from the president as the hall is coming up in thunderous applause. His various characters are being depicted on screen. Let's now go on to the actual stage to listen from him.
2: University ने सिनेमा में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें ऑनररी डॉक्टोरेट की उपाधि से सम्मानित किया। केवल कला में ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये 1988 से 1994 तक कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे तथा 1994 से 1999 तक ये न केवल कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे, बल्कि इस दौरान कर्नाटक के मंत्रिमंडल में बतौर बेंगलुरु विकास मंत्री कार्य भी किया। चाहे मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा हो या न्यू वेव सिनेमा, दोनों ही क्षेत्रों में कार्य कर इन्होंने अपनी अभिनय परिपक्वता का प्रमाण दिया। आज भारत सरकार भारतीय सिनेमा में इनके अप्रतिम योगदान के लिए इन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान

0: परम सम्मानीय श्री अनंतनाथ जी, आपके आत्मीय उद्गारों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर आपको पुनः हार्दिक बधाई। भारतीय सिनेमा में आपका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। कर्तव्य ध्वनि से आइए एक बार पुनः करें श्री अनंतनाथ जी का हृदय से अभिनंदन। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति जी,
1: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मेलन में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, विभागीय सचिव श्री चंचल कुमार जी, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और स्वजन, सभी को मेरी नमस्कार। मुझे पुरस्कार विजेताओं से बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ। विशेष प्रतिभा और कठिन परिश्रम के बल पर आपने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। आप सभी पुरस्कार विजेताओं से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी टीम के उन सभी सदस्यों तक भी मेरी सराहना अवश्य पहुँचाएँ जिनके योगदान से आपकी पुरस्कृत फिल्म का निर्माण संभव हुआ। मैं अनंतनाग को भारतीय फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। बहुत छोटी उम्र से ही और रंगमंच के

प्रख्यात लोगों के साथ जुड़ गए थे। अपने पहले नाटक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख भूमिका निभाई और दूसरी नाटक में गौतम बुद्ध की। फिल्म में उनका अभिनय थिएटर और सिनेमा के श्रेष्ठ आयामों का समन्वय प्रस्तुत करता है। फिल्मों का गंभीर अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि उनका अभिनय सहज यानी नेचुरल, संयत यानी रिस्ट्रेंड और प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक होता है और कलाकारों को भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। देवियों और सज्जन, यहाँ एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को तथा उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में हम भारत को के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। 550 से अधिक रियासतों का विलय करके सरदार पटेल ने स्वाधीन भारत की एकता का समीचित सुनिश्चित किया था। एकता नगर का ये क्षेत्र भी एक रियासत का हिस्सा था। विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र और आकार देने वाले सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा यहाँ शोभायमान है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत परिकल्पना को जाता है। आज पुरस्कृत फिल्मों में स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक भी शामिल है। देवियों और सज्जन, आज पुरस्कृत फिल्मों का एक संक्षिप्त विवरण मुझे दिया गया है। इन फिल्मों के बारे में जानकर मैं आप सबके योगदान से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं आप सबकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रीयता के एक विशेष अध्याय को उजागर करने वाली फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये फिल्म देश की एकता से जुड़ी गंभीर चुनौतियों और उनके समाधान का जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है। इस फिल्म की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सुश्री यामी गौतम धौर की मैं विशेष सराहना करती हूँ। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म भंगार जीवन और मृत्यु सार्थकता और निरर्थकता के जुड़े अनदेखा आयामों में अभिव्यक्ति करती है। ऐसे असाधारण विषय पर हृदयस्पर्शी फिल्म बनाने के लिए मैं निर्माता निर्देशक सुश्री सुमीरा राय और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री मम्मूटी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। इसी वर्ष उन्हें पद्मभूषण से अलंकृत करने का अवसर मुझे मिला था। देवियों सज्जनों, वर्ष 1970 में वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर भारत के इस महान सपूतों की स्मृति ने एक डाक टिकट जारी किया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हवाई अड्डे को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। आज पुरस्कृत फिल्मों में शामिल स्वातंत्र्य वीर सावरकर उनकी असाधारण जीवन गाथा के प्रति एक कलात्मक श्रद्धांजलि है। इस फिल्म के निर्देशकों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री रणदीप हुड्डा को मैं बधाई देती हूँ। कुछ लोगों की जीवन गाथा बहुत प्रेरक होती है। मैं मानती हूँ कि ऐसे प्रेरक

व्यक्तियों पर बायोपिक बनाना बहुत सराहनीय कार्य है। बचपन से खेल जगत के प्रसिद्ध होने का सपना देखने वाले भारतीय सैनिक श्री मुरलीकांत पटकार 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान घायल हो गए। गंभीर चुनौतियों के बावजूद अपने साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर वर्ष 1972 में वे पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने थे। वर्ष 2018 में श्री पटकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके चरित्र को अपने अभिनय से जीवंत बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री कार्तिक आर्यन को मैं बधाई देती हूँ। भक्षक नामक फिल्म महिला सुरक्षा के अत्यंत गंभीर विषय पर समाज को जागरूक करती है। बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति समाज को कृतज्ञ रहना चाहिए। इस विषय की संवेदनशील अभिव्यक्ति के लिए फिल्म की पूरी टीम को मैं विशेष साधुवाद करती हूँ। संताली फिल्म आंगेन के राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने से एक उत्कृष्ट फिल्म को तो प्रोत्साहित मिल ही रहा है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिला है। इस फिल्म के निर्देशन के लिए पुरस्कृत श्री रविराज मुर्मू को मैं बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म को पुरस्कृत करना तथा बाल कलाकारों को पुरस्कार देना देश के भविष्य में कलात्मक निवेश है। इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल कलाकारों आतिश शेट्टी, अरुण देव पथुला, रिद्धियान बनर्जी, तपोमय देव एवं गीताश्री चक्रवर्ती को मैं बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में उल्लेखनीय है, परंतु समय की सीमा के कारण मैं कुछ फिल्मों का ही उल्लेख कर पाई हूँ। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूँगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवियों और सज्जनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले। मैंने पिछले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये अनुरोध किया था कि पूरी टीम के सभी सदस्यों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब मेरे इन अनुरोधों पर ध्यान देते होंगे। देवी और स्वजनों, जो फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं, तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि लोकप्रिय कलाकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का एंडोर्समेंट ना करें। स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, स्टार वही है जो रोशनी फैलाए, अंधेरा नहीं। देश में बन रहे अच्छे फिल्मों के बारे में जानकर मेरा ये विश्वास और दृढ़ता है कि हमारी फिल्में गुणवत्ता यानी क्वालिटी के विश्व स्तरीय प्रतिमान बनाएगी। मैं आप सबके और फिल्म उद्योग के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्रोताओं, हमने कलाकारों के चेहरों पर उपलब्धि की मुस्कान देखी और हमारे कानों में अब भी कुछ देर पहले गूंजती तालियों की आवाज है। आज हमने यहाँ पुरस्कारों का वितरण ही नहीं देखा, हमने सपनों को सम्मानित होते देखा, हमने मेहनत को मंच पर आते देखा, हमने भारत की अनेक भाषाओं को एक साथ तालियां बजाते देखा और शायद इसी को भारतीय सिनेमा की सबसे

0: खूबसूरत तस्वीर कहा जा सकता है। अब मैं नीलम थपलियाल अपने साथी अंग्रेजी समीक्षक शैलेंद्र सिंह जाडेजा एवं आकाशवाणी वडोदरा और अहमदाबाद की पूरी टीम के साथ आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं।
1: நேயர்கள் இணைந்திருப்பது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.2 MHz ஒலிபரப்பு.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त हैं अभिनव पुंशी और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट। और आज की दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है वो यही रहेगी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत को एशियन गेम्स के अंदर इस वर्ष उसका पहला स्वर्ण पदक दिला दिया है। जी हाँ, द गोल्ड मेडल हैज फाइनली कम टू इंडिया थ्रू द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हु वेंट ऑन टू डिफीट श्रीलंका टुडे बाय अ ह्यूज मार्जिन ऑफ 147 रन्स। इंडिया हु वन द टॉस पहले वो चोज टू बैट फर्स्ट एंड बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने आज 216 रन बनाए उनके निर्धारित 20 ओवरों में, जिसको श्रीलंका जब चेस करने आया तो उनकी पूरी टीम सिमट गई सिर्फ 69 runs में। And this goes to show that this has also been one of the biggest defeats that India has churned out to an opposition when it comes to the margin of runs जिससे आज भारत ने श्रीलंका को हराया है। अभिनव, a very proud moment for every Indian.
2: It's a glorious moment और बहुत ही गर्व है हम सब भारतीयों को। आज हमारी इंडियन वुमेन्स टीम एशिया कप भी जीता और आज एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, और याद दिलाएं ब्रॉन्ज मेडल गया पाकिस्तान को जिन्होंने हराया बांग्लादेश को। और आज लग रहा है कि थीम है इंडिया को श्रीलंका को हराने का, क्योंकि हॉकी में इंडिया ने श्रीलंका को 16-1 से हराया। इंडियन मेंस टीम आज तो पूरी तरह फायर पे थी, क्योंकि जुगराज के 4 गोल, अभिषेक को दिलप्रीत की हैट्रिक और हरमनप्रीत के 2 गोल की वजह से इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली अपना मैच जीता 16-1। इंडोनेशिया को हराया था 13-1 और अब 16-1, तो लग रहा है हॉकी टीम सीधा करेक्ट पाथ पे जा रही है।
1: इंडीड, हॉकी टीम करेक्ट पाथ पे जा रही है, उनसे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद भी थी और अच्छा लगता है देखकर कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी हमारी आशाओं पर खरा उतर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुशु की दुनिया से भी आज एक बहुत अच्छी बड़ी ताज़ी खबर आ रही है, विच इज़ दैट इन भारत की वुशु स्टार जिसको हम कहते हैं रोशिबिना देवी अशोर्ड हरसेल्फ ऑफ अ थर्ड सक्सेसिव एशियन गेम्स मेडल आफ्टर स्टॉर्मिंग इनटू द वुमेन्स सैंडा 60 किलोग्राम सेमीफाइनल्स विद अ 5-0 विक्ट्री ओवर मकाओ चाइनाज चू मैनसिन आज के दिन। वेल, द सेमीफाइनल बर्थ गारंटीज रोशिबिना एटलीस्ट अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। और आपको ये बता दें कि रोशिबिना देवी जो हैं वो पहले भी भारत की एक बहुत कहते हैं ना जगमगाता हुआ स्पोर्ट्स का खिलाड़ी रह चुकी है। वो ऐसा सितारा है जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं, बिकॉज ये वही शख्सियत हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत

0: को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलवाया हुआ है 2018 में और सिल्वर मेडल भी दिलवाया हुआ है 2023 में, और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष उनका सफर एक पायदान ऊपर ही जाए अभिनव, एंड शी गोज ऑन टू गेट द गोल्ड फॉर अस ऑल्सो फॉर आर कंट्री.
1: ऑफ कोर्स रोशबीना देवी मेकिंग इंडिया प्राउड. अनफॉर्चुनेटली आर्यन जिन्होंने कोशिश करी थी अपने क्वार्टर फाइनल मैच में, वो अपना मैच हारे 2-1, नहीं तो वो भी प्रवेश करते सेमीफाइनल्स में, गारंटीड होता इंडिया को एक ब्रॉन्ज. गारंटी तो इंडिया को ब्रॉन्ज होता अगर इंडियन विमेंस टीम हरा पाती टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल टीम्स इवेंट में नॉर्थ कोरिया को, मगर वो नहीं हो पाया. 3

0: So a disappointing day in table tennis.
1: Right, and somehow that disappointment also seeped into the world of gymnastics, because gymnastics mein agar hum kahein to a slight correction over there, did not seep into the world of gymnastics. Ulta gymnastics ki taraf se ek choti si khushkhabri aapko deti hu filhal ke liye, which is that Praniti Nayak qualified for the world finals in artistic gymnastics with the score of 12.916. ji haan, Praniti Nayak jo Bharat ki taraf se representation rakh rahi hai gymnastics ki duniya mein, ab dekhna hoga kyunki unko final mein apni jagah wo bana chuki hai, ki wahan se kya वो इस सफर को एक कदम और आगे ले जाती है और भारत को मेडल दिला के लाती है, ये तो आगे ही पता चलेगा. लेकिन अभी के लिए खुशखबरी यही है कि प्रणति नायक भी क्वालिफाई कर चुकी है वॉल्ट फाइनल्स के अंदर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में विद अ स्कोर ऑफ 12.916 अब एंड अब.
0: और अगर हम कल की बात करें तो एशियन गेम्स में और गोल्ड मेडल्स की बरसात हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि 6:15 बजे एक्शन में होंगी या मनु भाकर और आईएस रुचि एंड ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन्स टीम एंड इंडिविजुअल इवेंट. एंड उसके बाद हमारे पास एक और गोल्ड का मौका है, क्योंकि 10 बजे आने वाली है मीराबाई चानू. एंड साक्षी, आई एम श्योर यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी मीराबाई चानू गेट हर एशियन गेम्स मेडल, व्हिच शी इज डेस्परेट फॉर.
1: Yes, I am. I'm definitely looking forward to that. And the good thing is that I should hopefully be covering that. And we'll be looking forward to the medals going up tomorrow. लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारे पास 6:30 बजे शाम के अपडेट्स में इतनी ही आपके लिए खबर थी. शाम को 7:30 बजे एक घंटे बाद फिर आपसे एक बार आकाशवाणी के माध्यम से जुड़ेंगे और लेके आएंगे आपके लिए दिन का रैप अप और ऑल्सो ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द प्रीव्यू फॉर टुमारोज इवेंट्स. गुड बाय फॉर नाउ.

medal day because India has finally struck gold thanks to the Indian women's cricket team. They played outstandingly well against Sri Lanka in the final. Aur kya dhamakedar batting kari thi, 216 run banaye with Smriti Mandana, top scoring with 79 runs. Uske jawab mein Sri Lanka were all out and for just a very, very average score of 69 aur India ko jeet mili 147 runs se. शानदार जीत और हमारी इंडियन वुमेन्स टीम ने अपना टाइटल डिफेंड करा है और गोल्ड मिला है इंडिया को और इस गोल्ड की वजह से इंडिया जो 18वीं पोजीशन में थे अब 8वीं पोजीशन में जा चुकी है मेडल्स टैली में विद वन गोल्ड एंड ऑफ कोर्स टोटल ऑफ 7 मेडल्स एज वेल 4 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज. Also, good news coming for India from the badminton circuit. A stunning victory, 3-0 versus Japan in the men's team competition. Ab India apne pravesh kare semi-finals mein. Aur semi-finals mein agar ab jate hain men's team badminton mein, to you are guaranteed a bronze medal. And semi-finals mein pravesh Roshabina Devi ne bhi kara hai Wushu Sando mein. उन्होंने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जीता विद पॉइंट्स डिफरेंस और अब वो भी गारंटी द ब्रॉन्ज. याद दिलाए रोशबीना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था हैंगजाओ एशियन गेम्स में और 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तो अगर कल की बात करी जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर डे क्योंकि सुबह 5:30 बजे ही जय मीना का सॉफ्ट टेनिस का क्वार्टर फाइनल मैच है और अगर जय मीना प्रवेश करते हैं सेमीफाइनल्स में ही इज गारंटीड अ ब्रॉन्ज मेडल. एंड देन उसके बाद शूटिंग में सबको इंतजार था. एवरीबडी इज बीन वेटिंग फॉर मनु भाकर एंड हर शूटिंग बडीज टू कम एंड टेक टू द शूटिंग रेंज क्योंकि मनु भाकर ईशा सिंह और आईएस सुरुचि विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस टीम और इंडिविजुअल इवेंट में है. उसके बाद शूटिंग के स्कीट का भी थर्ड एंड फाइनल डे है मेन्स एंड विमेंस इंडिविजुअल एंड टीम इवेंट्स. एंड देन वी हैव द बिग वन 10 AM मीराबाई चानू शी वॉन्ट्स गोल्ड. कभी एशियन गेम्स में उन्होंने नहीं जीता है मेडल और उनको चाहिए वेट लिफ्टिंग की 49 kg में एक मेडल. एंड ऑफकोर्स हमने बात की थी कुछ देर पहले बैडमिंटन के बारे में और 11:30 बजे होगा इंडिया वर्सेस चाइना. जी हाँ ये वही मैच है जो फाइनल था पिछली बारी और इंडिया हारी थी वो फाइनल. सिल्वर मेडल मिला था इंडिया को मगर इस बारी इंडिया क्या चाइना को हरा पाएगी क्या फाइनल में प्रवेश कर पाएगी क्योंकि सामना उनका अगर जीतेंगी सेमीफाइनल करेगी इंडोनेशिया या थाईलैंड. ऑल्सो आपको याद दिलाएं कल कबड्डी एक्शन भी है इंडिया वर्सेज ईरान एट 8:30 AM 9:45 AM इंडिया वर्सेज बांग्लादेश मेन्स कबड्डी. एंड एक और बड़ा गोल्ड मेडल मैच है अगर आप सुबह उठेंगे तो प्लीज 6:30 बजे इक्वेस्ट्रियन इवेंटिंग टीम को प्लीज चेयर करना बिकॉज उनके पास मौका है गोल्ड लाने का. और आज मेंस हॉकी टीम ने तो श्रीलंका की धुनाई कर दी. जी हाँ 16-1 का स्कोर था आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया द फर्स्ट मैच 13-1 द मेंस हॉकी टीम वेंट बेटर एंड बीट श्रीलंका 16-1. जी आज का थीम ऑफ द डे है श्रीलंका को हराना. विमेन्स क्रिकेट टीम ने करा और मेन्स हॉकी टीम ने भी करा. तो कल क्या इंडियन विमेन्स टीम थाईलैंड को हरा पाएंगी 11:30 AM होगा इंडिया और थाईलैंड का वो हॉकी मैच. एंड हमने आपको मीराबाई चानू के बारे में तो बताया ही वेट लिफ्टिंग में. ऑल्सो ज्ञानेश्वरी यादव इज इन एक्शन इन द विमेन्स 53 kg बाउट दैट्स एट

11:30 a.m. So it's an action-packed day for India, and they'll be hoping that some more medals come India's way tomorrow, because today we have struck gold. Or Aichi Nagoya say Asian Games mein ab India aage bada hai, and hopefully they keep on going the right day. Of course, there were disappointments. Table tennis teams, the Indian women's team quarterfinals mein hare North Korea ke saath khilaaf, and pre-quarterfinal mein Indian men's team ko haarna pada South Korea ke khilaaf. So that was disappointing for the table tennis contingent. But they'll be hoping that tomorrow the Indian contingent puts on a fantastic show and does well, kyunki aaj ek bahut achhi shuruaat hui hai hamari क्रिकेट टीम ने दी है. ऑफकोर्स याद दिलाई, बॉक्सिंग से भी गुड न्यूज आई थी. जादूमणि सिंह ने हराया था चंद्र बहादुर थापा को, वो एडवांस कर चुके हैं राउंड ऑफ 16 में. सो गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम बॉक्सिंग विद जादूमणि सिंह ऑफकोर्स, एंड वी आर होपिंग मच मोर बेटर न्यूज. वील बी बैक विद इट टुमारो एज वेल. और याद दिलाएं 10 बजे आपको सारा डिटेल रिपोर्ट्स आएंगे आज जो एशियन गेम्स में हुआ. सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन फॉर दैट. दैट्स ऑल फ्रॉम मी, अभिनव पुंछी. इट्स बीन अ फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया. होपिंग फॉर मच मोर डेज लाइक दिस अहेड, एंड दैट्स ऑल. कीप वॉचिंग.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग जहां

0: सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकराव और वुशु जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पंती क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा, आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंका की पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
1: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
0: हॉकी की भी यही कहानी है। वहां गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
1: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हैवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला। यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं, बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया, जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
0: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं, उनका वजन भी बढ़ गया है। लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास। लेकिन साक्षी ने तो

0: अनु प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया, शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली. नेक्स्ट वॉज जादूमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी. ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड. जादूमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल फाइव कार्ड्स. ही वन हिज बाउट बाय a unanimous decision and made it to the pre-quarter-finals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की. भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में. वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं. भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था. 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है. हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी. इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी. हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली. वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है. उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी. हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई. फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है.
1: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ. सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए. चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए. इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली. ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ. मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा. ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ. मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा. लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ. सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो. चुंग ने पहला स्कोर किया था इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए. अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली. अलीशा ने 1 यूको स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यूको और 1 इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए. अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ. इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचु का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा.
0: संघर्ष और सफलता का यह मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला. क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है. डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल.
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स. द फर्स्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु and Akane Yamaguchi of Japan, where PV Sindhu, despite having won the first game, went on to lose the next two to Akane Yamaguchi. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India

0: India 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
1: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, there North Korea came in their way.
0: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jinnepa Savitabut of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Oravan Paranang. And finally, Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
1: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
0: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वॉज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान्स अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कम्प्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, थेरबाय कम्प्लीटली आउट प्लेइंग हिज अपोनेंट।
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
2: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाटपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग रिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में सिर्फ एक पॉइंट के अंतर से 14-15 से हार गई। अब अगर चले मेंस फॉइल स्पर्धा की तरफ, हिमांश सिंह और सचिन दोनों ने पूल स्टेज में 3 जीत और 2 हार के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी। राउंड ऑफ 32 में हिमांश ने कजाकिस्तान के गलीम नूरमूव के खिलाफ पहले पीरियड में 6-5 की बढ़त बनाई, लेकिन नूरमूव ने वापसी करते हुए मुकाबला 15-9 से जीत लिया। वहीं सचिन को कजाकिस्तान के टिमोफी ने भी 15-9 से हराया। इस तरह मेंस फॉइल में दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
1: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
3: Aryan Nehra was an action for India in the swimming competition in the men's 1500 meter freestyle final B. Aryan tried his best, strived hard, but unfortunately finished fourth and came so close in that men's competition. The Indian men's 4x100 meter medley relay team comprised of Utkarsh Patil, Danush Suresh, Benedict Beniston and Akash Mane. The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
1: फिर शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एला वलेन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने।

0: पर वो चौथे पायदान पर रही।
1: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एला विनल वलारिवन एंड पार्थ मने फिनिश फोर्थ इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 2026 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parthmane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points. While Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in 3rd place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
0: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
2: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा, लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन एक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
0: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. स्टूडियो में आज हमारे साथ श्रोताओं चर्चा करने के लिए विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: थैंक यू. वेलकम सुषमा.
1: थैंक यू. आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 23,350. आरबीआई अब्सॉर्ब्स नियरली 72,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम थ्रू ओवरनाइट variable rate reverse repo auction estimates surplus liquidity in banking system to be over 4.9 lakh crore rupees and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक फिसला. निफ्टी 23,350 के नीचे बंद हुआ. रिजर्व बैंक ने ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम से 72,000 करोड़ रुपए अंतर्लीन किए. बैंकिंग प्रणाली अतिरिक्त नकदी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है. और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घटे.

0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। तो श्रोताओं, प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 330 अंक गिरकर 74,529 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 85 अंक लुढ़ककर 23,329 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.1% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.2% नीचे आया। इससे पहले बाजार सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण मामूली बढ़त के साथ खुले थे। हालांकि कारोबार के पहले ही घंटे में उन्होंने अपनी बढ़त गवा दी और बाद में दोनों सूचकांक फिसलकर कारोबार करने लगे। बाजार ने दिन के निचले स्तर से उबरने की कोशिश की, लेकिन अंततः वे गिरावट के साथ बंद हुए।
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. The Nifty dropped 85 points to settle at 23,329. In the broader market of the National Stock Exchange, the Nifty Midcap 100 index dipped 0.1%, while the Nifty Small Cap 100 index declined 0.2%. Earlier, the markets opened with moderate gains supported by positive global cues. However, they surrendered their initial gains within the first hour of trading, with both indices subsequently moving lower. Although the markets tried to recover from the day's lows, but they ultimately ended in bearish territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक घाटे में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में बजाज फिनसर्व 1.5% से अधिक, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस में 1.5% तथा सनफार्मा में 1.3% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इटर्नल लगभग 2%, इंडिगो 1.5% से अधिक और टाइटन के शेयरों में 0.7% की वृद्धि हुई।
0: In sectoral indices on the BSE, 23 out of 28 sectors edged downward. Among the top losers, housing finance as well as focused IT lost 1%. Capital goods dropped 0.9% and IT fell 0.8%. In contrast, telecommunications climbed 1%, realty increased 0.8%, services rose 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2,087 advanced and 215 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 22 पैसे मजबूत होकर 95.59 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा, हमने देखा कि बाजार ने जो आज अपने कारोबार की शुरुआत की, सत्र की जो शुरुआत की, वो हरी झंडे के साथ की, लेकिन जब खत्म हुआ तो लाल झंडी थी। इस दरमियान क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसे क्रमबद्ध तरीकों से जो क्यूज जिसे हम कहते हैं वो नजर आए इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, जिसने इस तरीके की ट्रैजेक्टरी बनाने में मदद की?
2: देखिए, ये चार दिन के बाद ये बेरिश ट्रेंड फिर से आ गया और एक चीज तो जरूर है, इसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, ये भी है। और दूसरा ये है कि कुछ जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि जुलाई और अगस्त में उन्होंने पैसा डाल दिया था इंडियन मार्केट में, सितंबर में खासकर वो बाहर निकाल रहे हैं। और एक वजह ये है कि एक तो उनको वैल्यूएशंस थोड़ी हाई लग रही हैं और दूसरा वो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं यूएस में और रेट्स उनको वहां वैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ वहां ज्यादा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये यहां पर जो ये जो माहौल आज का है वो इसी वजह से है। हालांकि क्रूड प्राइसेस नीचे आ रही हैं धीरे धीरे, फिर भी हमारे हमारे नजरिए में तो काफी हाई है, $98 है, बिलो $100 आ गई है।
1: क्षेत्रीय स्तर पे हमने बिकवाली देखी आईटी सेक्टर में।
2: हाँ, आईटी सेक्टर में अभी भी ये

0: हमारा हम अगर अपने देश की ही बात करें, ऐसे परिदृश्य में हम कहाँ खड़े पाते हैं अपने आप को, कि जहाँ पर हम देख रहे हैं जी पॉलिटिकल तनाव इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है. और सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, मार्केट्स अपने आप में एक फैक्टर है ये देखने का कि ये सूचकांक है अपने आप में ये देखने का कि किस तरफ हमारी ग्रोथ स्टोरी जा रही है. ऐसे में हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं आपकी राय में?
1: ये आप मार्केट्स की बात कर रहे हैं
0: जी.
1: हाँ, तो देखिए मार्केट्स जरूरी नहीं दिखाती है कि हमारी जो इकोनॉमी है कहाँ जा रही है. वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर निर्भर है और वो जैसे आपने खुद ही कहा सेंटिमेंट ड्रिवन होती है. तो अभी हाल ही में हमारा जो पहला क्वार्टर इस साल का 2026-2027 में 7.8% ग्रोथ हुआ है. और ये भी उस वक्त जबकि ये यूएस ईरान का वॉर शुरू हुआ और हमें लगा कि शायद इतना अच्छा नहीं होगा. हाँ, और आगे वाले दिनों में हमारी बहुत चुनौतियां हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्रप्शंस हैं. अभी तेल की जो बात अभी हमने की है, तेल का जो दाम बढ़ रहे हैं, हालांकि $100 से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी 90 और 100 के बीच में है. दैट इज अ वेरी वेरी हाई नंबर. तो हम इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से और इन्वेस्टमेंट पिकअप की वजह से हम इन चीजों, ये जो एक्सटर्नल हेडविंड्स हैं, उनको इस काफी जो देश हैं उनसे बेहतर इनको फेस कर सकते हैं.
2: So, Sushma, if talks at the UN do not lead to de-escalation, what is your base case oil price path over the next quarter?
1: That's a very difficult question because, yes, if the UN talks do not lead to de-escalation, then certainly oil prices will go up. But we should hope that something will happen because it is in the best interests of all concerned, all stakeholders, all the warring parties also, to ensure that prices are brought down to manageable levels. And also for Iran, which is blocking the Strait of Hormuz, and even the US, for Iran, they need to get their oil out there into the market, and they are having an economic crisis right now. So I think the latest information, reports are coming in that they may open up the Strait of Hormuz. There is a desire on both sides, but somehow there is always a spark that has arisen. And of course, the entry of the Houthis into it has complicated matters. They are making attacks in Saudi Arabia. But one would hope that something would happen in the UN.
0: सुषमा जी, बाकी खबरों पर भी आपसे विवेचना करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं आइए रुख करें वैश्विक बाजारों की तरफ. आज एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक मामूली बढ़त के साथ 0.1% दर्ज किया गया, जबकि जापान का शेयर बाजार अवकाश के कारण बंद था.
2: Moving on, the Reserve Bank of India, RBI, today absorbed 71,971 crore rupees from the banking system through an overnight variable rate reverse repo VRRR auction. The operation was conducted to absorb surplus liquidity from the system and align overnight money market rates with the benchmark policy repo rate. According to an official release, the central bank fully accepted all bids received against a total notified auction size of 75,000 crore rupees. As per the RBI data, currently surplus liquidity in the banking system is estimated to be around 4.92 lakh crore rupees. In simpler terms, how would you explain it to our listeners, Sushma?
1: Well, this variable rate reverse repo is precisely what it, you say. It is a variable rate. It is not
2: as a term.
1: Yes, so it is not a fixed rate. And this rate is fixed through an auction and through competitive bidding. And banks submit bids stating the rate at which they want to lend money to the RBI, and the RBI accepts these bids. Now, the rate, as I said, is not preset. And therefore, the banks are able to provide rates which are, which are more attractive, and therefore they are able to mop up the excess liquidity. And this is one of the instruments that the Reserve Bank of India has formulated to mop up excess liquidity. And it has, of course, as you have pointed out, had tremendous success.
2: Okay. The Reserve Bank of India, RBI, said its special US dollar Indian rupee forex swap facility

0: चांदी 0.9% लुढ़ककर 232,922 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब करते हैं आर्थिक सुर्खियों की तरफ।
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स बिलो 23,350 आरबीआई अब्सॉर्ब्स नियरली 72,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम थ्रू ओवरनाइट वेरिएबल रेट reverse repo auction and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म जूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया कई गंभीर तनाव और चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में आना उनके लिए सम्मान की बात है और अमेरिका काफी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, अवैध प्रवासन रोकने और अपराध पर लगाम लगाने जैसी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए की। इसके बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अपने फैसले का बचाव किया। श्री ट्रंप ईरान पर हुर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलने के समझौते में देरी का आरोप लगाया। भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। बिहार के जमुई जिले में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक प्रीति वर्मा को पत्र लिखकर 7 दिन के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
3: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित हैं। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security." Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the two-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads of states and union territories in New Delhi yesterday, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi yesterday met Shri Shri Vishwa Prasanna Tirtha Swamiji of Shri Pejavara Adokshaja Matha, Udupi.

0: ஒலித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்றைய இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவ்தாரிணி. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है. गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी. राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है. भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है. फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं. उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है. जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं.
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है. भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है. उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी. विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए. expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने.
1: भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की

0: कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैन सिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Kartik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security. Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the 2-day national conference of anti-narcotics task force heads of states and union territories in New Delhi yesterday, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi yesterday met Sri Sri Vishwaprasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adokshara Matha Udupi along with other dignitaries in New Delhi. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishvesha Tirtha Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishvesha Tirtha Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideas. At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue, reasserting its continental dominance, clinched a second successive gold medal at the sporting event by thrashing Sri Lanka by 100.

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்று நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரணி. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है. गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी. राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है. भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है. फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है. जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं.
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है. भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है. उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए. expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने.
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे. ये समझौता श्री ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की घोषणा के कुछ दिन बाद हुआ है. समझौते के तहत ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में ही रहेगा. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की. इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई. कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए. श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया. उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे. उन्होंने व्यापार संपर्क मंच का भी जिक्र किया. अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां और पार्श्व गायिका कृष्णा मुखर्जी का आज मुंबई में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया. यशराज फिल्म्स ने परिवार की ओर से निजता की अपील की. एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार समाधान तलाशना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। नेहरू तारामंडल, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी इराटोस्थनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य, अनेक परछाइयां, एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के

0: मुक्तानगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार्य समाधान तलाशना है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित 8 मित्र देश अपने हवाई संसाधनों के साथ अभ्यास में भाग लेंगे। वहीं 32 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी एराथोस्तनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य अनेक परछाइयां एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அல்கா சிங். राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वो वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष से

0: भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जब सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO संस्था द्वारा FAO 100 विमेन हीरोज एंड एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara in Gujarat today. During the ceremony, the President will confer degrees on more than 12,600 students. She will also award gold medals to students for their academic achievements in undergraduate and postgraduate programs. Later, President Murmu will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of the Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, she will also inaugurate the Spiritual Awakening for World Renewal Project and virtually launched the Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. The President is on a 3-day visit to Gujarat. Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity in at Ekta Nagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations." Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, President Murmu honored a total of 92 awardees from across the country. Prime Minister Narendra Modi met Sri Sri Vishwaprasanna Tirth Swamiji of Sri Pejavara Adoshaka Matha Udupi along with other dignitaries in New Delhi yesterday. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishvesha Tirth Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishvesha Tirth Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideas. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security.
4: "We strongly condemned the attacks from Pakistan, the airstrikes which were launched on Afghanistan in their Kunar and Paktika province. In this airstrikes, several civilians have been killed. We deeply offer our condolences on the precious lives lost. Such instances of aggression against a sovereign neighbor goes against the regional peace and security. We also reaffirm our support for Afghanistan, for their independence, for their sovereignty, for their territorial integrity."
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada attended the stakeholder workshop in New Delhi yesterday, focusing on ease of doing business, opportunities arising from free trade agreements and ongoing trade-related reforms. Speaking at the event, Mr. Goyal emphasized the government's strategy to strengthen export facilitation through both physical and digital mechanisms. National Human Rights Commission Chairperson Justice V. Ramasubramanian has emphasized the need for greater collaboration among national commissions to promote and protect human rights. He made the remarks while addressing a statutory full commission meeting with representatives of the 7 deemed members of the NHRC in New Delhi yesterday. At the Asian Games in HI Nagyo, Japan, double Olympic medalist Manu Bhakkar and Tokyo 2020 silver medalist Mirabai Chanu will headline India's Stay 4 campaign today with several medal opportunities in the offing. In shooting, Manu Bhakkar will compete in the women's 10-meter air pistol event alongside Suruchi Singh and Isha Singh. The trio will compete in the team event and individual qualification this morning with the individual final scheduled later in the day. Weightlifter Mirabai Chanu will take part in the women's 49-kilogram final. India is already assured of medals in men's badminton and women's wushu. On day three, the Indian women's cricket team clinched country's first gold medal of the games, defeating Sri Lanka by 147 runs in the final. The victory took India's medal tally to 7. And that is the end of this news bulletin.
5: நேரம் 5 மணி 10 நிமிடம்.